एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: की शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए देश वंदना समूह।

देश वंदना अभी आपने सुनी समूह स्वर में। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में ये भजन।

देविका पंडित और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे भजन। श्रोताओं, हमें खेद है कि हरिओम शरण के स्वर में गाया भजन हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। स्वर दिया है वाणी जयराम ने, कबीर का भजन है।

आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं चित्रा शर्मा की आवाज में गाया हुआ ये भजन।

ऋचा शर्मा और साथियों की आवाज़ों में गाए इस भजन के साथ ही हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। आज का विषय है बायो फर्टिलाइजर काहे औ ओकर महत्व। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं चित्रलेखा तिवारी।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। आप मन सुना था खेती के बाद। आज के कार्यक्रम में हमन बात करबो एक ऐसे विषय के ऊपर जेन ह आज के खेती पर बहुत जरूरी बन गए, माने बायो फर्टिलाइजर, मतलब जैव उर्वरक। ता आज के विषय हवे बायो फर्टिलाइजर काहे और ओकर महत्व काहे। आज के समय में किसान मन रासायनिक खाद के बढ़त उपयोग ले लागत बढ़ावत हैं और माटी के उर्वरता ला घटावत हैं और पर्यावरण ऊपर घलो असर पड़त है। ऐसा समय में बायो फर्टिलाइजर किसान मन पर एक बढ़िया और सस्ता विकल्प बन के सामने आए। तो चलो जानिन बायो फर्टिलाइजर के बारे में। सबले पहली जान लीन के बायो फर्टिलाइजर होते का। संगी हुआ बायो फर्टिलाइजर ला छत्तीसगढ़ी में जैव उर्वरक कहे जाते। एमा लाभकारी जीवाणु, कवक या सूक्ष्म जीव रहते जेन हा माटी में पहुंच के फसल ला जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराते। ये रासायनिक खातु नो है, बल्कि प्रकृति के अपन तरीका ले माटी ला उपजाऊ बनाते। जैव उर्वरक के काम है माटी के स्वास्थ्य ला सुधारना और पौधा के जड़ ला मजबूत बनाना और संगे संग पोषक तत्व के उपलब्धता भी बढ़ाना है। अब सवाल उठते कि काम कैसे करते। तो भाई कुछ जैव उर्वरक हवा में मौजूद नाइट्रोजन ला पकड़ के माटी में जमा कर देते और कुछ जीवाणु माटी में बंद पड़े फास्फोरस ला घुलनशील बना के पौधा पर उपलब्ध कराते और कुछ हर सूक्ष्म जीव पौधा के बढ़वार ला बढ़ावा देते और जड़ के विकास ला मजबूत करते। अब जानिन कुछ प्रमुख जैव उर्वरक के बारे में। सबले पहली बात आवत है राइजोबियम। ये हर दलहनी फसल जैसे कि चना, राहेर, मूंग, उरीद और मसूर पर बहुत उपयोगी होते, काबर के यह जड़ में गांठ बना के नाइट्रोजन उपलब्ध कराते। दूसर है एजोटोबैक्टर। यह गैर दलहनी फसल जैसे कि धान हो गए, गेहूँ हो गए, मक्का हो गए और साग भाजी पर बहुत उपयोगी माने जाते। तीसर होते एजोस्पिरिलम, जिन्हें धान मक्का जैसे फसल में बहुत लाभ पहुंचाते। एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है संगी हुआ PSB, मतलब फास्फेट घुलनशील जीवाणु। ये माटी में मौजूद फास्फोरस ला पौधा पर उपयोगी बनाते। अब बात करें जैव उर्वरक के फायदा के। तो सबसे बड़े फायदा तो ये होते कि माटी के उर्वरता ला बनाए रखते। ओकर बाद लगातार रासायनिक खातु डाले ले माटी के गुणवत्ता जो उन घट जाए रहते, फिर जैव उर्वरक माटी के जीवंतता ला बढ़ाते। दूसर फायदा बताए रासायनिक खातु के जरूरत कम हो जाते, मतलब किसान के लागत घटते और आमदनी बढ़ जाते। तीसर फायदा बताथन फसल के बढ़वार बढ़िया होते और जड़ हर एकर मजबूत बनते और उत्पादन में भी सुधार मिलते। चौथा बात करबो पर्यावरण ला सुरक्षित रखे के। तो माटी, पानी और हवा में प्रदूषण कम होते एकर से। अब जानिन के जैव उर्वरक के उपयोग कैसे करना है। तो एक तरीका है बीज उपचार के। बुआई के पहले बीज ला जैव उर्वरक ले उपचारित करके छांव में सुखा के फिर बुआ। और दूसरा तरीका है जड़ उपचार। साग भाजी और धान के रोपा लगाए के पहली जड़ ला उका जो जड़ी आते तेला जैव उर्वरक घोल में डुबो के फिर लगाना चाहिए। और तीसरा तरीका है माटी में उपयोग। गोबर खातु या कंपोस्ट संग मिला के खेत में डाले जा सकत है। चौथा होते किसान भाई बहनी मन पर जैव उर्वरक के उपयोग करत बखत कुछ बात के ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एकर पैकेट ला धूप ले बचा के ठंडा जगह में रखाओ और ध्यान से पैकेट ला देखाओ एक्सपायरी डेट तो नहीं है। यदि है तो ओकर उपयोग मत कराओ। फिर होते रासायनिक दवाई या फफूंद नाशक संग सीधा मिला के उपयोग नहीं करना है। ओकर तरीका होते ओ तरीका ले आप उपयोग कराओ। अब सरकार घलो प्राकृतिक खेती असंतुलित पोषण ऊपर जोर देवत है। तो जैव उर्वरक के उपयोग ले खेती कम लागत में टिकाऊ जैव उर्वरक के उपयोग ले खेती कम लागत म टिकाऊ बन सकत हे अउ आने वाला पीढ़ी पर माटी के उर्वरता ल घलो बढ़िया बना के रखी। तो याद रख, स्वस्थ माटी, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, यही है जैव उर्वरक के पहचान। अगर किसान भाई बहनी मन अपन खेत में संतुलित मात्रा में जैव उर्वरक, गोबर खातु, कंपोस्ट और जरूरत अनुसार रासायनिक खातु के उपयोग करही त निश्चित रूप ले बेहतर उत्पादन मिलही और माटी घलो लंबा समय तक उपजाऊ बने रही। त किसान भाई बहनी मन, आज के खेती के बाद में हम जाने कि बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक का है, एकर प्रकार का होते, एकर फायदा और सही उपयोग करे के तरीका। आज के खेती के बाद में अतके संगी हुआ, नवा विषय के संकल फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
0: बायो फर्टिलाइजर का है और ओकर महत्व, इस विषय पर खेती

0: की बात आप तक पहुंची। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। स्वर है सुरेश वाडेकर के। संगीत संयोजन किया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड 135 135।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलकारी है, तथापि उचित तो यह था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आज विषय है मोक्ष। आलेख एवं वाचन स्वर दिया है स्वामी आत्मानंद ने।
1: धर्म ग्रंथों में मोक्ष की बात कही गई है। मोक्ष को जीवन के परम प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार मोक्ष को 4 पुरुषार्थों में प्रमुख तथा अन्य 3 पुरुषार्थों द्वारा प्राप्तव्य लक्ष्य के रूप में माना गया है। वैसे मोक्ष का सरल अर्थ होता है मुक्ति, पर प्रश्न उठता है कि किससे मुक्ति, हमें किसने बांध रखा है जिससे हम मुक्ति चाहते हैं। इसके उत्तर में कहा जाता है कि हमें हमारी इंद्रियों ने, हमारे मन ने बांध रखा है। हम इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। मन हमें जिधर चाहता है नचाता रहता है। देह और मन की गुलामी को ही बंधन माना गया है। इस बंधन का हटना ही मोक्ष कहलाता है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य देह और मन का गुलाम क्यों हो गया है? इसलिए कि वह अपनी आत्मस्वरूपता को भूल गया है। उसने यह तथ्य विस्मृत कर दिया है कि वह आत्मा है। अपनी आत्मस्वरूपता को जगाने के लिए मनुष्य को विचार करना पड़ता है कि मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं। देह सतत परिवर्तित हो रही है, उसी प्रकार मन भी हर क्षण बदल रहा है। जो परिवर्तनशील है वह चेतन नहीं हो सकता, वह मात्र जड़ है। चेतन वह है जो इस परिवर्तन का अनुभव करता है। देह और मन सतत परिवर्तनशील होने के कारण जड़ हैं। मनुष्य के भीतर का जो चेतन तत्व देह और मन के परिवर्तनों का अनुभव करता है, उसी को आत्मा कहते हैं। मनुष्य जब एवं विद विवेक विचार के द्वारा अपने को देह मन से भिन्न आत्म तत्व के रूप में अनुभव करता है, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। संसार की आसक्ति में पड़ा हुआ मन बंधन का कारण है, पर संसार के भोगों से अनासक्त हुआ मन मोक्ष का कारण बन जाता है। प्रश्न उठता है कि मन को अनासक्त कैसे बनावें? हम पहले कह चुके हैं कि धर्म और मोक्ष के समान अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ माना गया है। हमने अर्थ और काम को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा है, उनकी अवहेलना नहीं की है, अपितु उनकी शक्ति को, महत्व को स्वीकार किया है। अर्थ का तात्पर्य है सत्ता और काम सृष्टि का बीज है। मनुष्य में अर्थ और काम की वृत्तियां रूढ़ हैं। ये मनुष्य को दलदल में भी फंसा सकती हैं तथा मुक्त गगन में भी उड़ा सकती हैं। जब मनुष्य केवल देह के धरातल पर ही अर्थ और काम का उपभोग करता है तो मानो वह संसार कीच में फंस जाता है। पर जब धर्म के द्वारा उन दोनों का नियंत्रण करते हुए उनका उपभोग करता है तो मोक्ष के उन्मुक्त गगन की ओर वह उड़ चलता है। अर्थ और काम का प्रवाह उद्दाम है। यदि प्रवाह पर रोक न लगे तो वह अनियंत्रित रूप से फैलकर प्लावन का रूप धारण कर कितने गांवों को डुबाकर नष्ट कर देता है। पर जब उसी नदी पर बांध बांधा जाता है तो वही जल नियंत्रण में आकर लोगों के अशेष कल्याण का हेतु बन जाता है। इसी प्रकार यदि अर्थ और काम की वृत्तियां अनियंत्रित हों तो वे मनुष्य का नाश कर देती हैं, पर जब धर्म के द्वारा उन दोनों को अंकुश में रखा जाता है तो वे ही मनुष्य को मोक्ष की ओर बहाल ले चलती हैं। स्वामी विवेकानंद मोक्ष को निस्वार्थता के रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है जो पूरी तरह से निस्वार्थ है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। विषय था मोक्ष। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आज सुबह प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:05 पर। कार्यक्रम सदाबहार नगमे सुनिएगा 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। आज दिन के 10:00 सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम नैतराने का प्रसारण समय होगा 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होता है दिन के 11:00। आज दिन के 2:00 प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, और शाम 4:00 से 5:00 तक संदेश टू सोल्जर्स हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि 9:55 पर और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। अब एक नज़र आज शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनते हैं शाम 5:00। चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 से। आज शाम 5:35 पर आप सुन सकते हैं बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। आज इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा आशा और सकारात्मक सोच का महत्व। क्रम में होगा महिला मंडली और प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। श्रोताओं, 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ग्राम सभा ये कार्यक्रम आप आज सुनेंगे 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा 7:30 पर। आज फोन इन कार्यक्रम में श्री जयंत साहू विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर श्रोताओं द्वारा फोन से पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। विषय होगा जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने आप सुन सकते हैं 6:20 पर, और शाम 7:00 इसका शेष भाग हम आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम चिट्ठी मिली का प्रसारण किया जाएगा रात 8:00। 8:20 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:55 होने वाले हैं संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारताश्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति असौ भारताश्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि संबोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराधप्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिताविषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवादरोधी सहयोगम इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनाञ्च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्रहवें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, मुस्कुराती हुई आंखों और खिलखिलाते हुए चेहरों के बीच कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सभी के बीच अपनी एक अलग ही खूबसूरत सी पहचान बना लेते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ऐसे लोगों के बीच हंसते समय एक या फिर दोनों गालों पर हल्के से गड्ढे पड़ते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डिम्पल कहते हैं। आज का दिन श्रोता मित्रों, ऐसे ही लोगों की प्यारी सी मुस्कान को सेलिब्रेट करने का दिन है। चलिए आज इस प्यारी सी डिम्पल वाली मुस्कान के पीछे के राज की बात हम आपको बताते हैं। दुनिया की पूरी आबादी में से सिर्फ 20% से 30% लोगों के पास ही डिम्पल वाले गाल होते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत ऐसे हुई कि सन 2022 में अमेरिका के अटलांटा में रहने वाले कंटेंट क्रिएटर ग्रेसफुल ग्रेडी ने सोचा कि दुनिया की हर अनोखी चीज़ के लिए कोई ना कोई दिन है, तो डिम्पल के लिए क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने 9 जुलाई को नेशनल डिम्पल डे के रूप में रजिस्टर्ड करवाया, ताकि लोग अपनी इस अनोखी खूबसूरती पर गर्व कर सकें। श्रोताओं, विज्ञान की नज़र में ये एक खामी है। डिम्पल गालों की मांसपेशियों के पूरी तरह विकसित न होने की वजह से बनते हैं, और जब कोई मुस्कुराता है तो त्वचा अंदर खींच जाती है। इसे जेनेटिक डिफेक्ट भी माना जाता है श्रोताओं, लेकिन यही दुनिया का सबसे खूबसूरत डिफेक्ट बन गया, सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही बन गई। हमारे हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री प्रीति जिंटा और अभिनेता शाहरुख खान की मुस्कान भी डिम्पल वाली है। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में इन दोनों पर फिल्माए गए इस गीत को आप और हम मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, गालों पर डिंपल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी के दिलों में प्यार, सहानुभूति, दया भाव, मासूमियत और ओंठों पर सच्ची मुस्कान हमेशा होना चाहिए। अपनी मुस्कान को हमेशा बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहें और खुशियां बांटें। कार्यक्रम आज सुबह में चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 9 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री जयंत साहू उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व, और सुबह

0: 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा, जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665923100026। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 9 जुलाई 2026 और 10 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आइए अब सुनते हैं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
2: आपका अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे से सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। न्यायधानी अर्थात स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों में, सभी चौक चौराहों में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार शहर से बाहर अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, इसी प्रकार यातायात में सुगमता और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए आप सभी से निवेदन है, हमेशा यातायात नियमों को आत्मसात करते हुए चलें। तनिक भी चूक या लापरवाही अथवा उतावलापन सड़क में कभी भी ना करें, अन्यथा तूफानी रफ्तार में भाग रहे टनों वजनी लोहे के भारी भरकम वाहनों के बीच हड्डी मांस के मानव शरीर की क्या बिसात है। मित्रों, जब भी किसी भी वाहन के साथ आप सड़क में हो, पूरे तन, पूरे मन और नियम के साथ उपस्थित हो, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कुछ लोग वाहन चलाते पूरी मानसिकता से तैयार नहीं होते हैं। कई बार किसी मोड़ में मुड़ने से पूर्व इंडिकेटर लाइट जलाते तो हैं, किंतु मुड़ने के बाद उसे बंद करना भूल जाते हैं। इस बीच में कई चौक चौराहे तिराहे इसी प्रकार पार कर जाते हैं। इससे पीछे से आ रहे वाहन चालक को बड़ा धोखा होता है, दुर्घटना भी हो जाती है। वैसे ही तमाम लोग बिना हाथ दिखाए या बिना इंडिकेटर लाइट से संकेत किए किसी भी दिशा में मुड़ जाते हैं। ऐसा करने से स्वयं तो गिरते हैं, दूसरा व्यक्ति भी इसका शिकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार रात्रि के समय कुछ चार पहिया वाहन जिसकी एक हेडलाइट खराब अर्थात

0: बंद होती है तब भी वे इसी हालत में उतनी ही गति में वाहन चलाते रहते हैं, और यदि चालक तरफ की हेडलाइट बंद हो तब तो यह साक्षात काल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, फिर से आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार की सावधानी को कभी भी अनदेखा ना करें। आप सुरक्षित रहें और को भी सुरक्षित रखें, और इस दुर्लभ मानव शरीर को बचाकर चलें, क्योंकि सर्वकालिक प्रासंगिक रामचरितमानस की पंक्ति याद तो है ना, बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में हम याद करेंगे अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे गुरुदत्त को। आज उनकी जयंती है। 9 जुलाई सन 1925 को बेंगलोर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1950 से 1960 के दशक में कई फिल्में बनाई, जिनमें प्यासा, कागज के फूल, साही बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद मुख्य रही। प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। श्रोता, उनकी फिल्में सहानुभूति और आत्मनिरीक्षण के लिए हमें प्रेरित करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सुख और दुख अक्सर साथ साथ चलते हैं, और अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो दुख भी एक प्रकार की गरिमा बन जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं, और आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

0: श्रोताओं, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हमारे भोजन की व्यवस्था भी करते हैं और साथ ही साथ तपती धूप में ठंडी छांव देते हैं। आज घर, कारखाने और सड़क बनाने के कारण पेड़ों की कटाई हो रही है। हर साल गर्मी बढ़ रही है और साथ ही साथ बीमारियां भी। इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय है वृक्षारोपण। अगर आपके घर में जगह है तो वहाँ पेड़ पौधे लगाइए। घर छोटा है तो बालकनी या छत पर गमलों में पौधे लगाएं। श्रोताओं, पेड़ लगाना सिर्फ एक पौधा मिट्टी में रोपना नहीं बल्कि धरती पर खुशहाली का बीज बोना है। आप सभी इस मौसम में एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कुछ यादें अतीत की।
8: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
7: कुछ बातें वर्तमान की।
9: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
7: कुछ सपने भविष्य के।
10: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
7: कुछ किस्से अनकहे।
11: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
7: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
0: श्रोताओं, इन्हीं संदेशों के साथ कार्यक्रम आज सुबह यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के शब्द हैं, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है सीता और गीता।

सीता और गीता, इस फिल्म का गीत अभी आप तक पहुंचा आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सजाया था इस गाने को आरडी बर्मन ने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आइए इस फिल्म में सुनते हैं लता।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ें

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, आर डी बर्मन का संगीत था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म है जब वी मेट, इरशाद कामिल के बोल हैं, प्रीतम का संगीत। आइए सुनते हैं ये तराना।

फूल और कांटे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के शब्द और रानी मलिक ने संगीत दिया था। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ के लिए अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की।

0: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं

0: तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said

0: The world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions, and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
0: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी लोकगीत आइए सुनते हैं साधराम मरावी की आवाज़ में। इस गीत के लिए हमें इन श्रोता साथियों के फरमाइशी पत्र मिले हैं, जिनके नाम हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुरजा सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, भाटापारा से आप हैं मिलो मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, विवान मानिकपुरी, विलक्ष, भाटापारा से ही

आप हैं संजय और इनके बहुत सारे साथी। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, लतेल साहू, आप सभी ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा है। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ और वंदना, रायपुर से रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्य प्रकाश, शीला कनक, गुनगुन, बेबी अदिति, तन्मय यादव। और भाटापारा से आपने फरमाइशी पत्र भेजा है दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत और नीरज रावत ने।

ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। लूत्रा खमरिया से आप हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। छत्तीसगढ़ दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गा राम साहू। धमतरी से आप हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती माखीजा, सविता बेबी, स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद एवं इनका पूरा माखीजा परिवार। आप सभी ने पसंद किया है ममता चंद्राकर के गाए इस गीत को।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आइए सुनते हैं देवचरण पटेल, ज्योति पटेल और गंगा सोनी की आवाज़ों में। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। चाटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। पोड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, एनी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्ठी, सृष्टि, कान्हा, कृष्णा, अंशु और इनके बहुत सारे साथी। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी लोकगीत नरेंद्र यादव और पिंकी मरावी की आवाज़ों में। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। सारागांव से आप हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीर मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव। हथबंद नेवधा से आप हैं सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं नरेंद्र यादव और पिंकी मरावी को।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत। गायक कलाकार हैं उषा उर्केरा और बहोरिक उर्केरा। पसंद करने वाले इस गीत को हमारे श्रोता साथी बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे बालोद से ही आप हैं, नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका,

जीतू, मुरली, गौतम, भाटापारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू, यहीं से वासु डॉली और पूर्वेश साहू ने भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा है। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से लेकर 9:55 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत आपने सुना, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, कुमार के बोल, शारिब तोशी का संगीत और वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार ने उसे लिखा था, अमाल मलिक का संगीत। और चित्रलोक में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें परहेज लंबे समय तक करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा लगता है, बिल्कुल मन नहीं मानता और ये लगता है कि क्यों हम ये सारी चीजें नहीं खा रहे या क्यों हमें ये सारी चीजें करना है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए परहेज की आवश्यकता है और कभी कभी वो इससे उकता जाते हों, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप उन्हें कभी कभी उनकी पसंद की चीजें सप्ताह में या महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा कई बार डॉक्टर अगर बहुत ज्यादा ही परेशानी की स्थिति ना हो तो वो ऐसा कहते हैं कि आप उन्हें इतनी क्वांटिटी में वो चीजें दे सकते हैं, तो उस ही मात्रा में ये सब चीजें आप दे सकते हैं। और जीवन यूं भी उन पर काफी कड़ा है, तो आप थोड़ा नरमी रखिए उनके साथ, समझाइए मत उन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप समझाने पर जाते हैं तो मामला जरा बिगड़ सकता है। उसकी बजाय उन्हें सुनिए उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहतर मदद साबित होती है। और अगर हो सके तो परिवार के दूसरे सदस्य भी परहेज में सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसा परहेज हो जिससे दूसरे परिवार के सदस्यों को करने से उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं तो ना करें, पर जो भी परहेज उनके साथ आप कर रहे हैं उसे एहसान की तरह मत दिखाएं। तो जितनी सहजता से ये बातें होंगी

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीजें हम नहीं खा सकते, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते।

हैं, जबकि आप उन चीजों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीजें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि मैं पता है कि ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

बैंग बैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अनविता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारा स्वास्थ्य भी कुछ इसी तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है, या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और इस परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है, तो वो चीजें जो हैं बाद में जाकर परेशान तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए भाई, परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए, तो बेहतर है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खिलखिलाते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की, तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही है, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और गीतों का साथ तो है ही, तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म का गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।
2: भंवरा बड़ा नादान है, बगी

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थीं और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ के रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और ना ही मैं तुम्हारे सुख को बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फॉर्म छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कितनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग के खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: नृत्य के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।

0: जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता?
1: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
0: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
1: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटे।
0: जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहाँ से।
2: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

दत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवी का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है आपको, डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर हैं वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश।

0: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने को हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल तथा समयबद्ध बनाना है। वहीं बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की

पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। मुख्यमंत्री

0: गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के डूमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधिसंखना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को भी समान महत्व दे रही है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 10 बजे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। फोन इन कार्यक्रम किसानवाणी की रिकॉर्डिंग 10:30 से की जानी है। कार्यक्रम में अपने फ़ोन कॉल शामिल करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 310026 और बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752। श्रोताओं, आप हमें इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 310026 और एसटीडी कोड है 07752। सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के शब्द हैं, SD बर्मन का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी इस गीत को भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सूरज नारायण, यदु लेखराम, यदु राधेश्याम, लतेल साहू भाटापारा से ही आप हैं, सियाराम, अश्विनी पांडे सोनाडीह से, सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा रायपुर से, नीलू मेघ लूत्रा खमरिया से आप हैं, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज ग्राम रसेड़ा अकलतरा से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, पूर्वेश साहू, वासु और डॉली ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से आप हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन इन कार्यक्रम किसानवाणी की रिकॉर्डिंग 10:30 से की जानी है। कार्यक्रम में अपने फोन कॉल शामिल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 3120026। हमारा फोन नंबर है 3120026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 जरूर लगाएं। सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। लता मंगेशकर की आवाज़ है तलाश फिल्म का गीत, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मजरू ने इसे लिखा है और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर, शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, कुमारी प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और इनका पूरा कोरम परिवार। चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन ने भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये तन्मय बेबी।

अनिष्का, राधिका गजभिये, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ग से विनोद, बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और इनके साथी। औरंगाबाद से इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र मिला है राजेश साबले पाटिल का, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं तलाश फिल्म का ये गीत।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं दबंग फिल्म का ये फरमाइश।

देशी गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल का युगल स्वर है। फैज़ अनवर की रचना पर साजिद वाजिद ने संगीत दिया है। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी पलारी से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू आशीष, कपिल साहू, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश आशीष, रवि शनि रियांश, कान्हा आदित्य देवांगन, चाटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन, हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, धमतरी से आप हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद एवं इनका पूरा माखीजा परिवार इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजे हैं। बंगला मटिया बालोत से आप हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बालोत से आप हैं नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम।

श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। आप अपने फोन कॉल शामिल करने के लिए हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 310026। हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, हीरो फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक, नैला जांजगीर से आप हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता तिवारी, इनकी बहुत सारी सखियां, और विष्णु प्रसाद तिवारी, मोगरा देवी मिश्रा और प्यारेलाल मिश्रा ने भी हमें पत्र भेजा है। ग्राम बुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम का पहला तराना आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चमेली, इरशाद कामिल की रचना है और धुन बनाई है संदेश शांडिल्य ने।

कार्यक्रम नैतरानी का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में रुस्तम फिल्म का ये गीत। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, आरको प्रोवो मुखर्जी का संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम नेतारानी को आगे बढ़ाने से पहले लीजिए सुनिए बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
1: नमस्कार मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे से। सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। न्यायधानी अर्थात स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों में, सभी चौक चौराहों में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार शहर से बाहर अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, इसी प्रकार यातायात में सुगमता और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए आप सभी से निवेदन है, हमेशा यातायात नियमों को आत्मसात करते हुए चलें। तनिक भी चूक या लापरवाही अथवा उतावलापन सड़क में कभी भी ना करें। अन्यथा तूफानी रफ्तार में भाग रहे टनों वजनी लोहे के भारी भरकम वाहनों के बीच हड्डी मांस के मानव शरीर की क्या बिसात है। मित्रों, जब भी किसी भी वाहन के साथ आप सड़क में हो, पूरे तन पूरे मन

0: और नियम के साथ उपस्थित हूं, क्योंकि प्राय देखा जाता है कुछ लोग वाहन चलाते पूरी मानसिकता से तैयार नहीं होते हैं। कई बार किसी मोड़ में मुड़ने से पूर्व इंडिकेटर लाइट जलाते तो हैं, किंतु मुड़ने के बाद उसे बंद करना भूल जाते हैं। इस बीच में कई चौक चौराहे तिराहे इसी प्रकार पार कर जाते हैं। इससे पीछे से आ रहे वाहन चालक को बड़ा धोखा होता है, दुर्घटना भी हो जाती है। वैसे ही तमाम लोग बिना हाथ दिखाए या बिना इंडिकेटर लाइट से संकेत किए किसी भी दिशा में मुड़ जाते हैं। ऐसा करने से स्वयं तो गिरते हैं, दूसरा व्यक्ति भी इसका शिकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार रात्रि के समय कुछ चार पहिया वाहन जिसकी एक हेडलाइट खराब अर्थात बंद होती है, तब भी वे इसी हालत में उतनी ही गति में वाहन चलाते रहते हैं, और यदि चालक तरफ की हेडलाइट बंद हो तब तो यह साक्षात काल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, फिर से आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार की सावधानी को कभी भी अनदेखा ना करें। आप सुरक्षित रहें और को भी सुरक्षित रखें, और इस दुर्लभ मानव शरीर को बचाकर चलें, क्योंकि सर्वकालिक प्रासंगिक रामचरितमानस की पंक्ति याद तो है ना, बड़े भाग मानुष्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने के अगले गीत की ओर। अजब प्रेम की गजब कहानी, इस फिल्म का गीत आप तक पहुंचेगा नीरज श्रीधर और साथी की आवाज़ों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को प्रीतम चक्रवर्ती ने संगीत से सजाया है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

सनम तेरी कसम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन, शब्बीर अहमद के शब्द थे और हिमेश रेशमिया ने धुन तैयार की थी। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम तराना। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द हैं, प्रीतम की संगीत रचना, फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नए तराने। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
0: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबिएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी

0: ये हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले

कुमारियों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दिए। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: नहीं, कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन

0: लीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया है कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
2: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
0: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे। और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे। भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
4: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या रथ
3: की दौड़ शुरू हो गई। देखो तो
0: बाकी और सजीले सवार है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे।

0: उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं। अरे ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
3: क्या
1: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जागीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई, नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कर...

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11:55 होने वाले हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया। और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों, जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल है, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में हिरासत में लिया है। राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। कल दोपहर राम गोपाल अग्रवाल स्वयं ईओडब्ल्यू मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्व

श्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया। और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ईकेवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा

महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई-केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजे हैं। अब से लेकर 2 बजे तक आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 2 बजे से 2:15 तक दीदी के गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 2:15 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे और शाम 4 बजे से 5 बजे तक संदेश टू सोल्जर्स हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी

0: परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज मदन मोहन की।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।
1: ठंडे ठंडे पानी।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनु रॉय का संगीत है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की इबारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियाँ होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत जरा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत है, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नजर ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है, और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है, और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए, आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें जरा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फेहरिस्त आप जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं, कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आंखों से दुनिया देखी जाती है, हम इंसान को परखने का काम भी आंखों से ही करते हैं, और आंखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आंखें अगर किसी को दान कर दें, तो किसी की आंख की रोशनी बन सकती है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत। बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

0: esto.
1: प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुनाया, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो जो गाने हमने चुने हैं वो आंखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आंखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारी पर होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, खास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सीआई

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में। कुछ जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछट जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं। कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं। दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियाँ और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आँखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आँखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आँखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी, सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहू रानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आँखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं। भाई गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आँखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आँखों आँखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी की?

के लिए सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी।

इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी। किससे कहानी में रात 2 बज गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पाँव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियाँ हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर, और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहाँ जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे, और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया। क्या बात है, ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं। और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आँखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं। तो सुनिए ये गाना और ज़रा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था, हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये ज़रा बताइएगा, माँ पिता, टीचर, पत्नी, पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली, ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर ज़रा भी नाराज़गी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं, जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात, भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला, अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफ़र कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आँखें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आँखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आँखें ऐसी हैं कि आँखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोहरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आंखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आजमी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराजगी और भी बहुत कुछ नजर आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें। इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब। और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया। संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आँखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी। 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इन्होंने इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आँखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम

माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा को खुला आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां चौदहवें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए, आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा? फिल्म थोड़ी सी बेवफाई। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आजमी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है, हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं, फिल्म हंसते जख्म का। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊँचे लोग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड

चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ, और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी। और अब सिर्फ इतना बता दें, आज के इस सुरीला सफ़र का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल

धन में नहीं बल्कि श्रम, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2:15 थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 2:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति

0: एसीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य

0: प्रमुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
1: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
2: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
1: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
4: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
3: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था। रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: जी आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।
4: आपके हसीन रुख पे आज नए

0: बहारें फिर भी आएंगे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
2: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहें और अपने कार्य करते रहें। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
2: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
2: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
2: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
1: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
2: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हमने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना
2: मेरा गुल्लक में गुल्लक
1: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
2: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
1: बिल्कुल, और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी

0: बातें होती, घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
1: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
0: देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ,

0: भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आ

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कम्बा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे
0: जी। और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को

0: तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत,
1: गीत हो जाए।
0: मधुर गीत
1: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देख रेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देख रेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें?
1: हाँ हाँ,
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए।
1: तो इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
0: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे

0: तो फला खिलौना लाना है, फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
0: बिल्कुल, और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भरा है, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
0: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था, हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी की गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
0: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
1: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
0: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम
1: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी, उसमें

0: सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं।
1: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
1: हमें तो एक गीत सुनना है,
0: तो सुनवाते हैं गीत।

0: भाई हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात

0: याद आ गई, 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुँह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा, ये बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट, तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के भाई, गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली बात ही समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था। ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय

0: बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
1: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और हाँ सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े क्योंकि घर के बड़े हैं वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं। और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था।
1: तो यानी सर्दी तो, की जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में,
1: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज़ कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया दिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्यौहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे, मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अत्यधिक सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखे, भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें, वाइपर्स की जांच शुरू करें, यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें, और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डीफॉगर ऑन करें, और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले, बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं।
0: तो अभी भी ये जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते, जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहें, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए, कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टॉयल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए अब वक्त हो गया। सोनाली देखिए अब वक्त वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे, इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार सहायक

देश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस, एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूँगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में। मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं

0: फिजिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था। उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा करके फिर वो तमगा हासिल किया, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा आपको, फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई, और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए। तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना, तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी,
1: जी
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
1: जी
0: माता और मदरलैंड इससे, ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में
1: जी
0: अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
1: जी
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं,
1: जी
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा राष्ट्र,
1: मातृभूमि,
0: मातृभूमि।
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर
1: जी
0: पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और
1: जी
0: ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या
1: जी
0: आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो
1: जी
0: पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, और सिक्योरिंग आपने पहली पोजीशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव, IED जैसी घटनाएं आमतौर पे कई ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस
1: जी
0: क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत
1: जी
0: सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है। तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं।
1: जी
0: इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक
1: जी
0: फौजी में तब्दील करती है, लेकिन वो दैट इज़ द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है।
1: जी
0: उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और
1: जी
0: एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज
1: मतलब
0: कराए
1: आप
0: जाते
1: अपनी
0: हैं।
1: निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी
0: ये
1: एडिशन में आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की, कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी कमांडो कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस

0: कर सके, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
1: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
1: जी,
0: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पे मिला, मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे बीइंग अ लोकल, मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिब जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी,
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वो बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है, ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है, तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के,

0: निडर बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाहिद जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी
1: तो फौजी उसका डटकर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
0: जी,
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है। ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
0: जी।
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है,
0: ठीक है।
1: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
0: जी,
1: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी,
1: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
1: जी बिल्कुल
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ, और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
1: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
0: जी
1: ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे
0: जी,
1: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
0: जी,
1: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
0: जी,
1: राणा और प्रदीप का, जिन सबके टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
0: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
1: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में
0: जी। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
0: जी,
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
0: जी,
1: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में। जिस एरिया में मैं काम करता था
0: जी,
1: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
0: जी,
1: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
0: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको, मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से
1: जी।

0: बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था, उनका वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे,
1: जी
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे
1: जी
0: ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना। और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को फर्स्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली
1: जी
0: खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकलें, जब आपका कॉन्वॉय निकले,
1: जी
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है।
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृत्तांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है
1: जी
0: उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको,
1: जी
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022, जो मुठभेड़ का दिन था,
1: जी
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे। कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई, लगभग
1: जी
0: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए, और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के एसपी थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट,
1: जी
0: गुलशन झा सर, जसबीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने दो टीमें बनाई, और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी,
1: जी
0: क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं,
1: जी
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है, ये
1: जी
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके,
0: तो
1: यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो
0: जी
1: लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे, तो
1: जी
0: एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों? और जंगल में एक सिद्धांत चलता है,
1: जी
0: यू मिस एंड आई हिट, और
1: ओके
0: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था, वो हम में
1: ओके
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि
1: जी
0: हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो
1: जी
0: नक्सल एनकाउंटर होता है ना,
1: जी
0: ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा
1: जी
0: है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई,
1: जी
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा, तो हमने पाया कि 2 बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब
0: जिस
1: जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था, अर्जुन कोड़ा,
1: जी
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर

0: आगे आने वाले एक महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं
1: मर जाऊंगा। जी जी, तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा
1: सकता। क्या बात है, और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम, और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
0: जी। धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा लिखा है,
1: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
0: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: मेरे टीम के साथी हैं,
1: साथी हैं,
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, aapka message humne pahuncha diya hai, Shivam sir sun rahe hain.
0: Ji, dhanyawad, Mrs. and Mr. Lodh ji. Main आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
1: जी। इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से,

0: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी। मुझे
1: और
0: खुशी है कि
1: जी
0: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी सभी
1: सभी
0: वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
0: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि
1: जी
0: रही है, तो यहाँ से मैसेज आया।
1: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
0: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
1: और ये है सर, जय हिंद सर। प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
0: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही
1: पाटना
0: हमारा उद्देश्य था।
1: बिल्कुल, करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
0: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
1: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
0: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
1: जी और यह है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये है मृदुल झा।
0: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का चल
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: उसकी
1: ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार। कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
0: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं
1: ओके okay.
0: अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
1: okay.
0: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
1: क्या तो, बात है सर। तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से। आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स। अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडिच हैं ये नई दिल्ली से।
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
1: जी,
0: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
1: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: और यह है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
1: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है, शिव है ये मेरठ से।
0: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
1: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही भी
0: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने
1: जी
0: गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
1: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
0: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन
1: जी
0: संभव ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
0: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा मैं FM रेडियो को, FM रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
1: जी,
0: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र प्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित

0: कर रहा है लोगों के अंदर।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर, आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक
0: जी,
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे
0: जी,
1: उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो
0: जी,
1: लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में
0: जी
1: 2025 के
0: नवंबर 2025 नवंबर जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपनी टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी। और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था
1: जी। मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN भोम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया
0: जी। तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई कार्य करता है अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था
0: जी।
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता

0: है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से,
1: ओके
0: लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
1: जी
0: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने। तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं, ये हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर और वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथ ही होंगे
0: बिल्कुल मेरे
1: बाबुल
0: साथ ही हैं और
1: जी।
0: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद
0: जय हिंद जय भारत।

संदेश सोल्जर्स अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफएन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनकपुर, डकिया

गुजा शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडी, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में

0: में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गाँव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, श्री टोली, मयूर चूंदी, उपका पानी, भड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजा पानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, घंता डांड, परसा डांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 105 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़े केला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागर पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कटकोना, जिलगा, गीत कुमारी, लबेद, बोतली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडई पानी, बुडार, जिडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी हम सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कलयुग से। आवाज राहत फतेह अली खां की है। इस गीत को लिखा है असीम रजा ने और संगीत है अनु मलिक का।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी हमने सुना राहत फतेह अली खां की आवाज़ में कलयुग फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सैयद कादरी का लिखा हुआ रूप कुमार राठौड़ के संगीत से सजा हुआ। आवाज़ श्रेया घोषाल की है, फिल्म का नाम है जहर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आशिक बनाया आपने फिल्म से हिमेश रेशमिया की आवाज और संगीत से सजा हुआ गीत, जिसे लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आइए अब चलते हैं और सुनते हैं फिल्म क्योंकि का गीत। उदित नारायण और राधा की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला और अंतिम गीत है सोनू निगम, सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में। फिल्म का नाम है काल। इसे लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।
1: Go home. I experienced it too. I

सोनू निगम, सुनिधि चौहान और कुणाल गांझावाला की आवाजों में काल फिल्म के गीत को अभी हमने सुना और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार। जय जोहार सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, हम महिलाएं जीवन में कई भूमिकाएं निभाती हैं, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सहकर्मी और दोस्त बनकर। इन सभी जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी चिंता, निराशा भी महसूस होती है, कभी असफलता का भी सामना करना पड़ता है, कभी आर्थिक समस्या भी सामने आ जाती है। तो सखियों, ऐसे कठिन समय में आशा और सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ाती हैं। सखियों, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होना कभी नहीं रुकता। बादल कितने भी घने क्यों ना हो, उनके पीछे सूरज अपनी जगह हमेशा मौजूद रहता है। सखियों, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी परेशानियां, समस्याएं भी स्थायी नहीं होती। बदलता है समय और समय के साथ बदलती हैं परिस्थितियां। बस जरूरत होती है अपने मन में आशा और सकारात्मक सोच रखने की। सखियों, हम महिलाएं केवल अपने परिवार की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि पूरे घर की शक्ति और प्रेरणा भी होती हैं। यदि हम महिलाएं सकारात्मक

0: सोच रखती हैं तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार में प्रेम बना रहता है और कठिन समय में भी सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। सखियों, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं वह है आशा और सकारात्मक सोच, और यही सोच हमें धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। तो सखियों, जीवन के प्रत्येक पलों का आनंद लीजिए आशावादी बनकर और सकारात्मक सोच के साथ। और सखियों, जिम्मेदारियों में कभी कभी हमारे कुछ सपने पीछे छूट जाते हैं, लेकिन याद रखिए जो सपने छूट गए हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। सही समय, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ उन्हें फिर से पूरा किया जा सकता है। सखियों, हर महिला के भीतर नई शुरुआत की ताकत होती है, तो खुद पर विश्वास कर छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़िए, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, उन्हें बस फिर से जीने का हौसला चाहिए। तो सखियो, आशावादी बने, खुद पर विश्वास भरोसा रखें और उन अधूरे सपनों को नई उड़ान दें जो कभी परिस्थितियों के कारण पीछे रह गए हैं। सखियो, अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अब गरीबों की जाय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: छत्तीसगढ़ की महिला नारी शक्ति स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित शुद्ध और पारंपरिक उत्पाद अब एक ही छत के नीचे सी मार्ट में। यहाँ पाइए बेहतरीन बस्तर आर्ट, कोदो कुटकी रागी के पौष्टिक स्नैक्स, कई प्रकार के अचार, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और हर्बल का अनोखा संगम। तो आइए सी मार्ट, नूतन चौक, सरकंडा, बिलासपुर में। फोन नंबर है 6266067047।
4: सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम महिला मंडली की ओर।
0: आज के क्रम महिला मंडली के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं नारी शक्ति स्व सहायता समूह की सखियां, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं, दूसरी सखियों को भी जागरूक कर रही हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो सखियों, चलिए बातें करते हैं नारी शक्ति स्व सहायता समूह की सखियों से। श्रीमती किरण ठाकरे, शोभा साहू, रुखमणी पैत्रीकर, अमृता गोयल जी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जय जोहार।
5: सबो संगवारी मल्ला,
6: जय जोहार।
0: तो सबसे पहले सखियों, आप सभी हमारी श्रोता सखियों को अपना परिचय दे देंगी।
5: मोर नाम किरण ठाकरे है और मैं नारी शक्ति स्व सहायता समूह से आज काम करके आज यहाँ तक आए हुई हूँ।
7: जय जोहार सब दीदी बहनी मल्ला। मोर नाम शोभा साहू है।
8: संगवारी हुआ, मोर नाम रुखमणी पात्रीकर है। मैं ग्राम परसाही से हूँ। मैं कृषि सखी के कार्य करता हूँ।
9: मोर नाम अमृता गोयल है। मैं ग्राम परसाही से हूँ और मैं मछली पालन करता हूँ।
0: सबसे पहले किरण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो नारी शक्ति स्व सहायता समूह है तो उसमें आप लोग कैसे जुड़े और क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग मिल करके?
5: सबसे पहले तो अपन समूह में ऐसे जुड़े हवन जैसे कि अपन छोटे छोटे आर्थिक स्थिति ने सुधारना रही संभाला तो हम समूह बनाए, थोड़ा पैसा बचत करें और पैसा बचत करते करते बोला ब्याज में चलाए और ब्याज में चला के फिर वही पैसा से थोड़ा अपन उद्योग चालू करें, छोटा मोटा काम चालू करें। आज छोटा मोटा काम चालू करते करते आज 17 सालों के समूह चला था मल्ला, जेमा बहुत जने दीदी मन अपन जो समूह में काम करते बरी बिजोड़ी पापड़ अचार ओला बना बना के देते और हमन सेल करते। जेमा मोर समूह के काम है कि हमन मिलेट के हमन बहुत सारे सामान बेचन जैसे और मिलेट के सब आइटम रहते, कोदो कुटकी, सावा, मिलेट के पोहा भी है, नूडल्स है, बिस्किट है, ओकर संग संग ओकर खिचड़ी बेचथन, मिलेट के आटा खलक लपिसवाथन मैडम और धोथन, धो के सुखा के अच्छे से निमार पछिन के ओकर आटा बनाथन और आटा के ओहुल पैकेज करथन, लेकिन ओकर साथ साथ मल्टीग्रेन आटा भी आते आजकल तो हमन चार पांच प्रकार के मिलेट ला मिला के ओला पिसा के ओकर मल्टीग्रेन आटा खलक बेचथन। चने साथ साथ तीजा पोरा मा मैदा के सूजी के तो सामान बेचथन, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचथन बेचथन, ओकर साथ साथ परमानेंट हमारे मैडम मिलेट के खुरमी, ठेठरी, सलोनी, चीला फरा सब बेचथन। अभी ठंडी आने वाला है तो ठंडी में हमन गोंद के लड्डू हो गए और कोदो के लड्डू हो गए और अलसी के लड्डू हो गए, मतलब बहुत सारे लड्डू बेचथन, ओकर संग संग ना हमन मिलेट के लड्डू भी बेचथन, तो मिलेट और गुड़ का मिला के लड्डू बनाथन, ड्राई फ्रूट भी डाले रहथन। मिलेट में कोदो के हो गए, कुटकी के हो गए, सावा के हो गए, रागी के हो गए, सबके लड्डू और बिस्किट बना के बेचथन।

0: बिजौरी पापड़ अचार है और समूह के बने अपन पूरा देसी आइटम चूल्हा गुड़सी सिगड़ी हवे चूल्हा के राख तक हमन बेचथन वहाँ के और बहुत सारा सामान है जैसे कि ऑर्गेनिक दाल है चावल है।
1: चीजों को आप लोग कहाँ पर बनाती हैं और कहाँ से बनाकर आप लोग पर लाते हैं फिर बेचते हैं, इसके विषय में आप बताएं।
0: हमन अपन समूह में अपन घर में वो चीज बनाता है जो पहले के दादी नानी लोग बनाते रहे वह अभी वो चीज नहीं मिला थे वह। हालांकि मार्केट में हमारा अचार बरी पापड़ तो मिल जाते लेकिन वो चीज नहीं मिला जो पहले हमारे घर में बनाते रहे। सील लोड हमें दाल ल पीस के बरी बनाते रहे वैसा ही अपन सील में पीस के मसाला पीस के अचार बनाते रहे जैसे कि आम के अथान जो लोग अभी के लोग जाना ही नहीं ओला हमारे संगी मन हमारे दीदी मन बना के ओला मलाते और हम ओला बेचथन। कर साथ साथ जैसे हमारे समूह में बहुत जन दीदी मन ऐसे भी करते मैडम जैसे कि चूल्हा गुड़सी बना के रखते रहते लकड़ी होगी हवन लकड़ी होगी गौरी गौर होगी वर्मी कम्पोस्ट होगी बहुत सारा सामान रखता है जो पूरा तरीका से बिना केमिकल के रहते वो तो रहते छे संग संग हमारे समूह के बनाए रहते। ऐसे तो आप मतलब मार्केट में बहुत सारा सामान मिल जाए लेकिन हमन के जो समूह में मिलते वो हर घर के मतलब प्योर चीज रहती। अभी जो चीज बनाते ना मन है पूरा पूरा हमारे समूह की दीदी मन के तैयार किए सामान रहते वह कि ना तो कोई केमिकल के रहे और ना ही कोई कंपनी के रहे। समय देखते हुए साबुन और क्रीम पाउडर बहुत आ चुके हैं जिकर माध्यम से हमारा अच्छा तो होते और साथ साथ नुकसान भी होते। तो हमन समूह में हमला साबुन निरमा हो गए फिनाइल हो गए सब के ट्रेनिंग मिलते ट्रेनिंग के साथ साथ हमन होला बना के और हुला बेचथन जो प्योर तरीके से पूरी तरीके से बिना केमिकल के रहते।
1: कि आप लोग कितनी महिलाएं मिल करके ये कार्य करती हैं और हम तक ये शुद्ध जो स्वच्छ चीजें हैं वो पहुंचाती हैं।
0: पहली तो बहुत जन दीदी रहे दीदी मतलब कि देवा लगभग 4,000 दीदी मन मिलके काम चालू करें लेकिन 4,000 दीदी में सबो जन तो काम नहीं करे काबर की कोई अपन रोजी मजदूरी करे चलते थे लेकिन कुछ दीदी ऐसे है जो घर मरी जाते जेकर छोटे बच्चा है तो मन कहीं जा नहीं पाते रोजी मजदूरी बा तो वैसे दीदी मन धीरे धीरे काम ला चालू करे और आज काम ला चालू करते करते आज हमन का पूरा तरीका से हमारा रोजी रोटी हमारे घर बैठे मतलब मिल जाते। तो बहुत जन अभी तक दीदी मन है लगभग 1,500-2,000 दीदी मन हमारे संग मिल के काम करे थे वे।
1: और शोभा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बड़ी पापड़ का जो कार्य करती हैं तो किन किन चीजों की आप बड़ी अपने हाथों से और जो दीदियां समूह से आपसे जुड़ी हैं उनसे बनाते हैं उन लोग वो चीज आप बताइए हमें।
2: रखिया बड़ी बनाता है मखना बड़ी कद्दू का और पपीता के जिमी कांदा बड़ी पापड़ अचार बिजौरी पपीता के बिजौरी उड़ीद दाल के बिजौरी ये सब बनाता मैडम।
0: हमन समूह में बहुत सारा अचार बनाथन जेकर साथ साथ अभी ये कैद के अचार बनाथन और महुआ के अचार बनाथन और ड्राई फ्रूट जैसे काजू किशमिश बादाम हो गए उखर मीठा अचार बनाथन इमली के जिमी कांदा के अचार बनाथन आम के रस ला निकाल के उखर जेली के अचार बनाथन और अथान तो बनाथन जे संग संग कटहल के लहसुन के ऐसे बहुत सारा अचार अभी नया नया बना के रखे हन। अचार के वैरायटी तो बहुत सारा है लेकिन सबका हम स्वाद के साथ बनाथन सबला सफाई देख के बढ़िया से अचार ला तैयार करथन।
1: रुकमणी जी आप एक कृषि सखी हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या कार्य करती हैं और कैसे आप और महिलाओं को जागरूक करती हैं।
3: मैं गांव के कृषि सखी हूँ मोला सब गांव के दीदी मन हर चुन के मोला कृषि सखी बनाए हैं और मैं गांव के सब दीदी मन ला जागरूक करे के काम करता मतलब रासायनिक खाद के हमन उपयोग करत रहे नौकर से बहुत ज्यादा शरीर में बीमारी पैदा होत रही से और ये सब चीज ला प्राकृतिक हमन ला पहले से दे रखे है जेकर हम उपयोग नहीं करत रहे नहीं जानत रहे तो मोला ट्रेनिंग में मैं गए हूँ तो मोला सब चीज सिखाई है तो मैं आके अपन गाँव की दीदी मन ला बताता हूँ कि जो पेड़ पत्ता के जो रथे सब पत्ता मन या हरी खाद है जैसे सब्जी और भाजी काटथन ते मके वेस्ट मटेरियल है तेला सब ला हमन घुरवा में फेंक के ओला गोबर खाद डाल के बना के ओला हमन अपन खेत में उपयोग करथन। बिलासपुर से पीटीसी से मैं प्रशिक्षण लिए हूँ दीदी।
1: तो जैविक खाद आप बनाती हैं?
3: हाँ,
1: तो
3: जैविक खाद बनाथन हम।
1: हाँ, तो थोड़ा सा हमको इस विधि के बारे में आप हमारी श्रोता सखियों को बताएं।
3: जैसे हम गोबर ला लेके सोझे घुरवा में फेंक देते रहे हैं उसना नहीं करना है ओला ना से ओला नाडे बनाना है जमीन में मतलब ओला जैसे हम अपन घर दीवाल उठाथन वैसा है ओला चारों तरफ से उठाना है और नीचे ला फ्लोरिंग नहीं करना है ओला नाडेब टेंक कथे। वह दो प्रकार के रथे एक तो कच्ची नाडेब रथे एक तो पक्की नाडेब रथे। कच्ची नाडेब बेसरम से बनते और पक्की नाडेब है ईटा से बनते। ओला नीचे में गोबर पानी घोल के छिड़काव करना रथे ओकर बाद सब बाहरन सकेलन पत्ता मन ला के ओला नीचे में रखना रथे ओकर बाद ओमे मिट्टी डालना है ओकर बाद ओमे गोबर डालना है वैसने तीन लेयर में करना है ओकर बाद नाडेब हमर भर जाते जब तो ओला ऊपर से मिट्टी से ढक देना है ओमे धनिया मेथी भी बो सकत हन जेमे ढके रथन ओकर ऊपर में ओका 30 दिन के बाद वह तैयार हो जाते ओला हम अपन एक लेयर से ओला निकाल के ओला अपन खेत में हमन डाल सकथन और बेच भी सकथन ओला। दीदी हुआ उमर ऐसे चीज नहीं डालना है जो झिल्ली हो गई या कांच हो गई या ऐसे कोई भी चीज नहीं डालना है जो खाद बनाए में नुकसान करे वो चीज नहीं डालना है हमन ला ऐसे चीज डालना है जो सड़ जाए गल जाए और खाद बन जाए।
1: जी जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं आप। फिर से जैविक खाद की ओर लोगों को ले जाना बहुत जरूरी है।

0: दहिना ओकर स्वास्थ्य ह खराब हो गए, ओकर लचीलापन लाना जरूरी है। इसलिए हमन ये जैविक खाद ला अपनाए हैं ताकि हमारे वातावरण शुद्ध हो सके और मिट्टी के लचीलापन वापस आ सके।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरता फिर से आ जाए और फिर से हमारा जो मृदा है वो फिर से वैसी हो जाए जैसे वो पहले थी। सखियो, हमारी सखी अमृता जी मछली पालन करती हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं और सुनते हैं वो किस प्रकार से मछली पालन की इस व्यवसाय को उन्होंने चुना और कैसे कार्य कर रही हैं।
2: दीदी मन, मैं यहाँ समूह से कार्य शुरू करे हूँ। सब दीदी मन हम बैठा करें, बैठा करे बाद हम बात निकाले कि हमारा आर्थिक स्थिति कैसे सुधरी। तो जाके सब बात निकली तो दीदी मन बोली कि ट्रेनिंग में जाए पढ़ी, तो सब संगी में मिलजुल के बात करें। तो फिर ट्रेनिंग में गई, ट्रेनिंग में गए वहाँ आरसीटी केंद्र ट्रेनिंग में हम आए वहाँ कोनी में, कोनी ट्रेनिंग ले आके काम चालू करे हन कि गावे के तालाब में मछली डाले हन।
1: आप लोग कैसे देखभाल करते हैं तालाब में मछलियों की, ये बताएं।
2: संगी जैसे 10 जन हैं हम, पारी पारी हम जाओ एक देख कर मछली का।
1: और किरण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो आप लोग का बाहर का भी कार्य रहता है, ये सब चीजें बनाना, उपलब्ध कराना, उसके बाद भी घर का संतुलन बनाए रखना, तो उसको आप लोग कैसे संतुलन करते हैं, आप इस विषय में बताएं।
3: वैसे तो दीदी महिला माला बहुत सारा संघर्ष करे पड़ते, सबसे सुबह उठना रहते, सबसे लास्ट में सोना रहते, जेकर बीच में जो भी समय रहते सबसे पहले हमारे काम रहते, घर के पति है, बच्चा है, घर का पूरा संभालना रहते, जिम्मेदारी का कब पूरा करे बाद जो समय मिलते मैडम हमारा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है तेमा हमारे अपन सब संगी मिलके बड़ी पापड़ अचार जो भी सामान होगी मिलेट के सामान बनाना है ओला हम सोच लेते हैं, आगे दिन तैयार करते कि ये करना है करके ओला बनाथन और बना के फिर ओला तैयार करथन। ओकर बाद फिर ओला तैयार करे के बाद हमने ओला अच्छे से हाथ साफ सफाई करके बढ़िया से पन्नी में ओला पैक करके डब्बा में पैक करके बेचथन, काबर की कुछ भी सामान है कतको कीमती रहे लेकिन अच्छा से पैकेजिंग करे पड़ते।
1: समूह से जुड़ने के बाद कैसा लगता है आप लोग को, और आप लोग आत्मविश्वास के साथ आप लोग आत्मनिर्भर भी बनी है, तो इस बारे में थोड़ा आप बताएं।
3: छोटे छोटे चूड़ी चाकी तक बार पति को पड्डी पहन रहन, सास ससुर को पड्डी पहन रहन, लेकिन आज ऐसे हो गए कि बच्चा मन के ट्यूशन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई वगैरह कुछ कुछ बार हमन खुद कर लेथन, उसका खर्चा खुद उठा लेथन। पहले तो हमन हाँ खाली घर में एक मेंबर बन के रहते रहन, सदस्य बन के, लेकिन आज वही सदस्य मन हमन घर में पति के साथ हाथ बटाए लग गए। जैसे पति अगर 2 रुपए कमाते तो हमन हाँ 1 रुपए कमाए की हिम्मत रखत हवन, तो आज हमन ला घर परिवार में सम्मान तो मिला थे मिला थे, साथ साथ हमन ला आस पास में अपन समाज में भी सम्मान मिलते कि आज हमारी बहु बेटी आगे बढ़ चुके है, जैसे कि आज यहाँ स्टूडियो में आए हैं तो गर्व की बात है।
4: आज बहुत खुशी होता है कि आज समूह के तहत कुछ तो इनकम हम मतलब मिला थे।
1: और महिलाओं का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत
4: जरूरी है मैडम,
1: और हम महिलाएं बिल्कुल पूरी निष्ठा से ईमानदारी से अपने कार्य को करती हैं।
2: जब ले मछली पालन शुरू करे हम समूह की दीदी मन, तब ले हमारे सब मस्त हमारे गाँव में पूछा थे और बढ़िया हमारे मछली उछली खरीदे आवा थे, हमका सम्मान मिला थे, अब हम आत्मनिर्भर बना था हम।
0: जब से हम समूह बने हैं हमला बहुत अच्छा लगा थे, हमला घर से आए जाए की परमिशन मिला थे और सबके सहयोग से हम अतका आगे बढ़े हैं, एकर से हम बहुत खुशी हुई से।
1: जी जी, हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज महिलाएं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्य क्षेत्र पर आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग कुछ कार्य करते हुए कभी आप लोग कोई गीत गाती होंगी, कुछ गुनगुनाती होंगी, तो वो थोड़ा सा गुनगुनाकर हमारी श्रोताओं को आप सुनाएं।
2: हम सब दीदी बहनों मिल के खेत खा जाता, नींदे उन्दे जाता हूँ तो गाना वाना कुछ भी गाथन उथन आज मैं सुना देता हूँ।
5: देवी गंगा लहरा तुरंगा भोजली।

0: जुड़ना चाहती हैं तो वो कैसे जुड़ सकती हैं?
1: समूह में जुड़े पर बस एक ही चीज लगती दीदी, आधार कार्ड और पैन कार्ड हुई तो पैन कार्ड और अपन परिचय पत्र और राशन कार्ड। एक जरिए से हमारे समूह में जुड़ जाता है ना, समूह में जुड़े के बाद उखर पंजीयन होते शुरू में, और पंजीयन होने के बाद फिर 3 महीना मोला बचत पैसा मिलते जिला कभी वापस नहीं करे बर रहे, समूह में जोड़ के रखे बर मिलते बोले सरकार तरफ से, और समूह में जुड़ जाते। जैसे भी कोई दीदी मन जिसे समूह बनाना चाहते तो हमन तो पहले से समूह बन चुके हमन 12-15 साल पहले से, तो वो दीदी मन अलग से 10 जन संगी मन एक साथ इकट्ठा करके मन अपन समूह नया समूह बनाते, और नया समूह बनाए के बाद अपन कुछ कार्य करते।
0: आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी श्रोताओं को दी, और आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है आपने ये भी साझा किया। कि आप चलते चलते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हम सबो जन यही संदेश देना चाहबो दीदी कि महिला जब एक सशक्त रही ना तो एक परिवार अच्छा रही, और परिवार जब अच्छा रही तो एक समाज अच्छा रही। बस अबके कहना चाहिए कि कोनो भी हो संगी दीदी मल्ला बोला एक बार समूह में बिल्कुल जोड़ा है, समूह जोड़े के बाद हमला आसपास के सबके जानकारी मिलते, खुद महिला मल्ला महिला के हक का है तेला हमला नहीं पता रहे, तो ये सब चीज के जानकारी मिलते।
0: आज के क्रम महिला मंडली में आप लोग शामिल हुए, अपने विचार और अपना अनुभव हमसे आपने साझा किया, इन सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। और बिल्कुल हम आशा करते हैं कि जो आपसे बातचीत हुई है, आपने जो जानकारी हमारी सखियों को दी है, वो जानकारी उनके मन में एक उत्साह बढ़ाएगी और वो भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए बिल्कुल कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगी। और आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
2: जय जोहार।
3: सखियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम महिला मंडली में नारी शक्ति स्व सहायता समूह से किरण ठाकरे, रुक्मणी पात्रीकर, शोभा साहू और अमृता गोयल जी को। प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे की।
4: छत्तीसगढ़ की महिला नारी शक्ति स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित शुद्ध और पारंपरिक उत्पाद अब एक ही छत के नीचे सी मार्ट में। यहाँ पाइए बेहतरीन बस्तर आर्ट, कोदो कुटकी रागी के पौष्टिक स्नैक्स, कई प्रकार के अचार, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और हर्बल का अनोखा संगम। तो आइए सी मार्ट नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर में। फोन नंबर है 6266067047।
3: सखियों, अब आइए आनंद लेते हैं दिल्ली 6 फिल्म के इस गीत का, जिसकी फरमाइश की है रचना माधुरी और मधु वर्मा ने मोपका बिलासपुर से। सखियों, आप भी अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम में ईमेल करके। हमारी ईमेल आईडी है mahilasabhabsp@gmail.com पर। तो सखियों, चलिए सुनते हैं ये गीत। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है AR रहमान का और स्वर है रेखा भारद्वाज और साथियों के।

0: सखियो, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस दिवस से जुड़ी कुछ बातें बता रही हैं वर्षा मसन जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम वर्षा मसन है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य केवल बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि किसी भी देश के विकास के लिए जनसंख्या का संतुलित होना कितना आवश्यक है। अक्सर हम सुनते हैं कि बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं का कारण बनती है। यह बात सही है कि जब जनसंख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छ जल और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर यदि जनसंख्या बहुत कम होती है तो कार्यबल की कमी, आर्थिक विकास में मंदी और आबादी की बढ़ती जिम्मेदारी जैसे चुनौतियां सामने आने लगती है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के लिए जनसंख्या का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंख्या तभी एक शक्ति बनती है जब वह शिक्षित, स्वच्छ, स्वास्थ्य, कुशल और जागरूक हो। इसलिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण और परिवार नियोजन जैसे पहल को बढ़ावा दिया जाए। जब हर नागरिक को समान अवसर मिलते हैं तभी जनसंख्या राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमारा लक्ष्य केवल जनसंख्या बढ़ाना या घटाना नहीं, बल्कि उसे संतुलित रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होना चाहिए। यही सतत विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि जागरूकता फैलाएंगे, संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे और एक ऐसे समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे जहाँ जनसंख्या और विकास के बीच संतुलन बना रहे। धन्यवाद।
0: सखियो, अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़ी बातें बता रही थी वर्षा मसन जी। सखियो, अब आइए आपको सुनवाते हैं रोजा फिल्म का ये गीत, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है कोटा बिलासपुर से सरला, संध्या, रूबी और अंकिता काछी ने, और इसी गीत को सुनना चाहा है आशा, रंजना, ललिता, रीता ने सकरी बिलासपुर से। सखियो, आप भी हमें अपने पसंद के गीतों की फरमाइश भेज सकती हैं और सुन सकती हैं अपने पसंदीदा गीत। आप हमें पत्र भी लिख सकती हैं और ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है mahilasabha@gmail.com। तो चलिए ये सखियो सुनते हैं बहनों के पसंद का ये गीत, जिसे लिखा है पीके मिश्रा ने, संगीत है यार रहमान का और स्वर है मिनमिनी का।

सखियो, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49 और पिन नंबर है 495006। सखियो, आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है patraemailbsp@gmail.com पर। सखियो, अभी नहीं बातों और गीतों के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा भी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आज शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। शाम 7:20 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा का और शाम 7:30 पर हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज हम सुनेंगे जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग और महत्व विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री जयंत साहू से बातचीत। साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी मिली। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और मोनाली ठाकरे की। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:20 पर।

रात्रि 9:15 से लेकर 11 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कल प्रातः 6:30 पर सुनिएगा खेती की बात। सामूहिक सुझाव होगा मृदा स्वास्थ्य सुधार में बायो फर्टिलाइजर की भूमिका विषय पर। जानकारी देंगी चित्रलेखा तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना विषय पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान सुनिएगा प्रातः 6:45 पर।

0: गुंजे स्वर गांव के में सुनिएगा पारंपरिक पंथी गीत डेरहाराम जांगड़े और साथियों की आवाजों में, साथ ही दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथियों की आवाजों में सुनिएगा बांस गीत, जिसमें प्रसंग होगा राजा सुंदर सिंह और बेलकेनाए के किस्सा। ये कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी को सुनिएगा सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे सुनिएगा एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा जगत, जिसमें आज की बात होगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और रूपरेखा विषय पर, और होगा क्रम अर्थ जगत और सवाल जवाब। शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें बेरा की गोठ में सुनिएगा ग्राम सभा में पौधा लगाए के चर्चा करो, पेड़ ला बचाओ विषय पर चर्चा। साथ ही फोन इन कार्यक्रम में सुनिएगा जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग और महत्व विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री जयंत साहू से बातचीत, और जानकारी होगी मंडी और मौसम की। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करीन फेरबदल। गौरेला पिंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछल्ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले हो ही शुरू। औ कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक EOW के रिमांड मा भेजे गीस। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा फेर बदल करे हे। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगल ला स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हे। उखड़ जगह मा तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दया राम ला गौरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर नियुक्त करे गए हे। उन्हें हेमंत रमेश नंदनवाल ला तकनीकी शिक्षा रोजगार और प्रशिक्षण के संचालक बनाए गए हे। एकरे संग ओमल्ला छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार घलो सौंपे गए हे। एकर अलावा सुमित अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद ला महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिम्मेदारी दे गए हे। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू हुए हे। इस संबंध मा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह लोक शिक्षण संचालनालय ला पत्र भेज के दिशा निर्देश जारी करे हे। एकर तहत वर्तमान मा राज्य संचालित होवैया 16 जून ले 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र ला अब खत्म कर दे जाही। एकर जगह मा देश के आने प्रमुख शिक्षा बोर्ड और मंडल के समान है। अब छत्तीसगढ़ मा घलो नवा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होके 31 मार्च तक चलही। फिर छात्र मन ला मिलैया गर्मी के छुट्टी मा कोनो कटौती नहीं करेगे हे। प्रदेश मा 1 मई ले 15 जून तक गर्मी के छुट्टी पहली जैसे ही रही। 1 अप्रैल के नवा शिक्षा सत्र शुरू होए के संग ही स्कूल मा साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। ए दौरान छात्र मल्ला निशुल्क पुस्तक सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और स्कूल ड्रेस बांटे जाही। उन्हें आने सबो छात्र मन के हित के योजना और गतिविधि घलो अनिवार्य रूप ले शुरू करे जाही। इस बीच राज्य सरकार हा अवैया शैक्षणिक सत्र ले प्रदेश के सबो स्कूल मा कक्षा पहली मा प्रवेश बर न्यूनतम आयु 6 बछर निर्धारित कर दे हे। ए नवा व्यवस्था सबो शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय पर लागू होही। संगे संग शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत निजी विद्यालय के 25% आरक्षित सीट मा होइया प्रवेश बर घलो ए नियम प्रभावी रही। ए निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप ले गए हे। स्कूल शिक्षा सचिव डहले जारी निर्देश के अनुसार अवैया शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल के लयिका मन के

0: के आधार मा प्रवेश दे जाही। अभिभावक और लइका मन के सुविधा बर राज्य शासन ह 1 अप्रैल के निर्धारित आयु पूरा नहीं कर पाए लइका मन बर 1 जुलाई तक उखर जरूरी आयु पूरा होए तक 3 माह के छूट दे हे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक ला लागू करैया छत्तीसगढ़ देश के पहली राज्य होही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता मा काली मंत्रालय मा होए राज्य मंत्रिमंडल के बैठका मा ए विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगी। बैठका के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा बतायन की ए विधेयक के उद्देश्य राज्य मा व्यापार और उद्योग स्थापित करे के प्रक्रिया ला ज्यादा सरल पारदर्शी डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्री परिषद हा बस्तर फाइटर्स मा फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम मा संशोधन ला स्वीकृति दे दे। उहे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगे हे। एखर ले राज्य मा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान के स्थापना ला प्रोत्साहन मिलही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राज्य के शासकीय सेवक मन बर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना के शुभारंभ करीन। एकर उद्देश्य शासकीय सेवक मन ला आकस्मिक परिस्थिति मा सम्मानजनक तुरते और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हा कहीन कि अब कर्मचारी मन ला अचानक पड़े जरूरी बर निजी साहूकार या ऊंचा ब्याज दर मा ऋण ले बर व्यवस्था के सामना नहीं करना पड़ी। सरकार हा ऐसन व्यवस्था विकसित करे है जेखर जरिया ले ओमन बिना जरूरी कागजी प्रक्रिया के अपन पात्रता के अनुसार कम समय मा ऋण पा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ सरकार हा राज्य मा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ला बढ़ावा देबर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ला तेजी ले बढ़ाए के फैसला करे है। सबो जिला के RTO और DTO ला अपन क्षेत्र मा चार्जिंग स्टेशन ला जगह चिन्हित करे और NOC के प्रक्रिया तेज करे के निर्देश दे गए है। वर्तमान मा अलग अलग कंपनी के अलग अलग ऐप है जेखर ले उपभोक्ता मन ला परेशानी होते। सरकार अब राज्य स्तर मा एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाही। उहे भारत सरकार घलो यूनिवर्सल EV चार्जिंग ऐप लावत है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ला करीब 500 करोड़ रुपया के कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार करेगी रहीस। आज ओमल्ला रायपुर के विशेष अदालत मा पेश करेगी जहां कोर्ट हा रामगोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW के रिमांड मा भेज देगे है। जानबा के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ए मामला मा विशेष अदालत हा स्थायी वारंट जारी करे रहीस। उखर तलाश मा कतकोन जगह छापा घलो मारे गे रहीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली रायपुर के डुमर तलाई मा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डहर ले विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 के लोकार्पण करीन। ए दौरान श्री साय हा घोषणा करीन कि परिसर के नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम मा करे जाही और यहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी के तर्ज मा उखर 15 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित करे जाही। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहीन कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संग ईज ऑफ लिविंग ला घलो समान महत्व देवत है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय डहाले भुवनेश्वर मा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला मा छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ला अच्छा प्रदर्शन बर सम्मानित करेगी। ये कार्यशाला देश के जनजाति अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण बर आयोजित करेगी रहीस। एमा 29 राज्य के जनजाति अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि मनहा हिस्सा लेन। कार्यशाला के दौरान जनजाति अनुसंधान संस्था के कार्यप्रणाली जनजाति विकास बर अनुसंधान आधुनिकीकरण GIS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार परिस्थिति तंत्र जैसन विषय में विचार विमर्श करेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर में प्रवेश बर ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया काली 10 जुलाई ले शुरू होवत है। काउंसलिंग में भाग लेवैया इच्छुक अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज के संग 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत है। अभ्यर्थी के प्रवीण सूची 23 जुलाई के विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित करे जाही। अब थोरकुन समाचार सार मा राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेन व्यास की काली 8 जुलाई

0: निधन हो गईस। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक रहिन। उमनहा लंबा समय तक राजनांदगांव जिला के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में घलो अपन सेवा दिन। केंद्रीय गृह मंत्रालय डहर ले जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना ला राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित करे गए है। गृह निर्माण मंत्रालय डहर ले हर बचत देश भर के पुलिस थाना के मूल्यांकन आने आने मानक में करे जाते। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा CSIR UGC नेट परीक्षा पर अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दे है। बलौदा बाजार भाटापारा जिला में खमरिया चूना भट्टी के तीर दो मोटरसाइकिल के टकराए ले दो लोगन के मौत होगी, फिर एक माई लोगिन गंभीर रूप ले घायल हो गए है। और दुर्ग जिला के मोहन नगर थाना पुलिस रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेलत 12 जिन आरोपी अल्ला गिरफ्तार करे है। ओखर तीर ले 9 लाख रूपया ले ज्यादा नगद पैसा और 10 मोबाइल जब्त करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौं फेर। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करिन फेर बदल। गोरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले हुई शुरू। औ कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक EOW के रिमांड मा भेजे गीस। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन एहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रिंस, एकांश गवांडकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, भिट्टा। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफजाल ताज। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय। नरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला, विशाल नावकर। सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविकरानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले। कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू। रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू। गामना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्र भान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। यवतमाड़ से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर। दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद और इनके साथ है सत्यमानंद। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाड़, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वद देशमुख। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्कीन। आइए आप सबकी मिली जुली फरमाइश पर सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाजों में मासूम फिल्म का गीत, जिसे लिखा है और संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने।

कार्यक्रम ई मेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाजों में मासूम फिल्म का गीत। कार्यक्रम ई मेल करे गीत सुने का अगला फरमाइशी गीत है फिल्म हिना से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजल का पंजाब से सुभाष।

गोदारा, बिमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तान्या नारंग, बुढ़ाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्टो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी हेजल, राजेश और रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद, विभूति अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजम उल होदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश चंदन और इनके संग है पांडुरंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश निवान, सौरभ शायना और मैंडी शर्मा, जिला पटियाला पंजाब से हमारे साथी हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद पश्चिम से सूरज गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं हीना फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल करिए गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। वडिंगी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत फरहत रिफत, नुजहत साजिया नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर,

कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमराज, पवन, संजय, दीपक और कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रेमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, मंजली गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं अनुराधा पौड़वाल, सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला की आवाज में बादल फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है अनु मलिक का।

अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला के गाए बादल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गोरेला पिंडा मारवाही जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया और कोल लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक के ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की ही तरह यथावत रहेगा। 1 अप्रैल को नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और गणवेश का वितरण किया जाएगा। वहीं अन्य सभी छात्र हितैषी योजनाएं और गतिविधियां भी अनिवार्य रूप से शुरू की जाएंगी। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। यह नई व्यवस्था सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए राज्य शासन ने 1 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए 1 जुलाई तक उसके आवश्यक आयु पूर्ण होने तक 3 माह की छूट प्रदान की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्रिपरिषद ने बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम को गोरेला पिंडरा मारवाही जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं हेमंत रमेश नंदनवार को तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण का संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा सुमित अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म

0: ऐप बनाएगी, वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बहुचर्चित महादेव ऐप भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा को नामजद किया है। इनके साथ ही जांचकर्ताओं ने इस घोटाले के मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं, जिन्हें पहले ही आरोपित किया जा चुका है। इन भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा रही है। विदेश भाग चुके 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय कानून के तहत इन व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में कल गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल को 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में उच्च स्तरीय विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, प्रमुख पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ ही प्रदेश की लोक कलाओं, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में के प्रवेश प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 10 जुलाई से शुरू हो रही है। काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की प्रवीण सूची 23 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आगामी 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी।
1: आज 9 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरा भारत देश कवर कर चुका है। आज उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघगर्जन का गतिविधि और हल्की से मध्यम वर्षा का गतिविधि जो है आगामी 4 दिन तक रहने की संभावना है। 4 दिन के पश्चात ये वर्षा का गतिविधि थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है और 4-5 दिन के पश्चात दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी विस्तार रूप से वर्षा होने की चांसेस है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक थे। उन्होंने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर में पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में खमरिया चूना भट्टी के पास दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और दुर्ग जिले के मोहननगर थाना पुलिस ने रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 लाख रुपए से अधिक नकद राशि और 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गौरेला पेंड्रा मामला वाहिक जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया और कोल लेवी

0: घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक के ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए चलते हैं कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के अगले और अंतिम भाग में। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के इस भाग का पहला फरमाइशी गीत है फिल्म कच्चे धागे से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नुसरत फतेह अली खान साहब का। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं: नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, सांदुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्ध अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमन आवाज, बिलासपुर से चनुलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, कनुलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, तेंगलुर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस एकांश सुमित और धोनी गवाणकर, जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा श्राव्या राम टेके, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और इनके साथ है राजेंद्र कटारे। आइए आप सब मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं कच्चे धागे फिल्म का ये गीत।

पांडे, उषा अनुश्री, धनश्री पुरांडे, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा सोमार साह, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लालबाबू दीवाना, उमराज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली कबीर और देव शंकर, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक प्रीतम, धनराज मरकाम, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, पोड़ीभाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत और कमल साहनी, मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग, बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, पुरानी भिलाई 314 से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जीशान अहमद सिद्दीकी, शनवाज दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना, जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, नागर कोहरा, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रतेश, प्रज्ञेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी अमरदीप, पशुपति टिंकू और मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लाव्या, आरव, एस के पप्पी, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से हमारे साथी है विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा वंडलकर, मोन्ताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर, रत्नमाला और ओम कुमार सुरड़कर।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में अभी हमने सुना कच्चे धागे फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में इब्राहिम अश्क का लिखा हुआ गीत। संगीत राजेश रोशन का है, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। इस गीत के लिए हमें ईमेल के माध्यम से फरमाइश भेजने वालों के नाम हैं, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबुतारा कौशल सेन, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाडी, शालिनी, तिवांशी, वाणी और आरबी खेड़ा, पांडरकौड़ा से अनिल बुरा।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा सिंह पाठक, धुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका, बठिना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, अविराज, लुतरा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अल्तमश खत्री, अलकमा, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना, हसन, नाजिया इब्राहिम, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, भिलाई से अशोक श्यामकुंवर, प्रमिला, आसमा श्यामकुंवर, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तेवरता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकाला, शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीना, विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। आइए आप सबके म्यूजिकली फरमाइश पर सुनते हैं खाकी फिल्म का गीत अभिजीत चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत राम संपत का है। फिल्म का नाम है खाकी।

अभिजीत चक्रवर्ती के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं, आइए चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला गौरी बहनी के राम राम जय जोहार। संगी हो, लइका बच्चा मन के स्कूल ह खुल गए हे और जब स्कूल खुलते तो लइका मन कापी पेन सिलेट जूता मोजा है ना ले लगे थे और ओकर बर चाही पैसा और इही समय हमर किसान भाई बहनी मन के खेती खार के घलोक खर्चा बीजा है खातू है माटी है ना भाई तो सब बर पैसा चाही तो पैसा बचाबो तभे तो मिलही जी तो कोनो प्रकार से हमला पैसा बचाना है ना भाई। जैसे हम कहबो ऊर्जा बचावा और पैसा बचावा बिल्कुल सही कहा था ना बिल्कुल सही बात है भाई बहनी हुआ ऊर्जा बचत करा और पैसा ला बचत करा एला हम सब ला अपनाना चाहिए। संगी हो पैसा के बचत हो ही तभे तो हम कुछ काम बूता में रुपया पैसा लगा सकबो भाई और सब पैसा बिजली पानी इहीम खर्चा हो जी तो हम कैसे बचाबो है ना भाई। पैसा बचा के बहुत उदिम है संगी हो लेकिन आज हम आप मन से गोट बात करबो ऊर्जा बचावा पैसा बचावा। आज के समय में कहूँ कहिया तो ऊर्जा के बहुत जरूरत हुआ था वह घर है खेती उद्योग धंधा स्कूल कॉलेज हर जगह है ना भाई बिजली पानी और दूसर प्रकार के ऊर्जा के उपयोग होत हावे आप सब जानत हो। फिर जौन ढंग ले हम अपन ऊर्जा के बेवजह खर्चा करत हन अकतहा खर्चा करत हन है ना ओला हम सबला बचाना है जतका उपयोग है वतका तो करो फिर फालतू के खर्चा झन होवे हमर पैसा और प्रकृति दोनों बर नुकसान है संगी हुआ अगर हम फालतू के बेवजह के बिना कारण के हम ऊर्जा खर्चा करत हन ता देखा ये सब ले ऊर्जा बचत करना बहुत जरूरी हावय। संगी हो ऊर्जा बचत करना काबर जरूरी हावय तो देखा ऊर्जा बनाए बर कोयला पेट्रोल डीजल ये सब लगते ऐसन संसाधन के उपयोग होते तो ये सब संसाधन हा सीमित हावय। हमर कहे के मतलब ये संगी हो कि एकर ज्यादा उपयोग करत हन बिन कारण के उपयोग करत हन तो एक दिन है सिराज ही ज्यादा उपयोग करे ले पर्यावरण हा घलोक प्रदूषण बाढ़ी और जलवायु परिवर्तन होही तो हमन ऊर्जा के बचत करबो तब प्राकृतिक घलोक हा सुरक्षित रही संगी हो। जब हम कम बिजली के उपयोग करन है ना और जब हम संसाधन ला बचाबो

0: तभे तो सुरक्षित रखबो, तभे तो हमर अवैया पीढ़ी मन बर बांछी, है ना भाई। हमन तो बढ़िया उपयोग करके अपन काम ल चला लेन, अवैया पीढ़ी बर नहीं रही तुमन कतका परेशान होई। तो संगी हो, हमर पर्यावरण ल सुरक्षित रखे बर, हमर अवैया पीढ़ी बर संसाधन बचाना है, तो हमला कम बिजली या ईंधन के उपयोग करना है। जरूरत करे म करन, फालतू के झन करन। पंखा, कूलर, बल्ब कतका न कतका जलत रही थे, हमर काम बूता नहीं है। एक कम खोली में काम है, दूसर खोली पंखा कूलर चलत रही थे। तो ये सब बात के हम सबला चेत करना है संगी हुआ। जैसे सोलर ऊर्जा अपनावा, पानी बचावा, काबर पानी बर पंप चालू करेल पर थे तो बिजली के खपत होते। खेती खार मा ऊर्जा बचत करे बर सोलर पंप के उपयोग करा, बिजली और डीजल के बचत होही। सिंचाई ला सही समय में करा और सही मात्रा में करा। आधुनिक मशीन के उपयोग ले समय और बिजली दोनों बाँची संगी होवा। हर मन खेला थोर थोर ऊर्जा बचाना है, बचाथन तब बड़े बदलाव आही संगी हो। स्कूल होए, गांव हो, शहर हो, ये सब में जागरूकता लाना है। छोटे छोटे लड़का मल्ला सिखाना है। जैसे खोली में कक्षा में बैठे रहते पंखा चलत रहते और बाहर लड़का मन के खेल के पीरियड है कि लघु संकट पीरियड होते तो बाहर चल रहे तभोल चलत रहते। तो ये सब बात ला सिखाएल पड़ते संगी हो। और ऊर्जा बचे ले सिर्फ पैसा नहीं बचे संगी हो, हमर सबके जिम्मेदारी आए। और ऊर्जा बाँचत हो ही तो पर्यावरण सुरक्षित रही। ये काम काजला ऊर्जा बचाए के हम आज ले ही शुरू कर दन। और देखा एकरे बर कही थे के ऊर्जा बचावा, पैसा बचावा और हर घर में खुशहाली लावा। तो देखा सब बिजली पानी बचाहा भाई। और ये संदेश आला सुन लेथन।
1: छत्तीसगढ़ की महिला नारी शक्ति स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित शुद्ध और पारंपरिक उत्पाद अब एक ही छत के नीचे सी मार्ट में। यहाँ पाइए बेहतरीन बस्तर आर्ट, कोदो कुटकी रागी के पौष्टिक स्नैक्स, कई प्रकार के अचार, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और हर्बल का अनोखा संगम। तो आइए सी मार्ट नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर में। फोन नंबर है 6266067047।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: छत्तीसगढ़ की महिला नारी शक्ति स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित शुद्ध और पारंपरिक उत्पाद अब एक ही छत के नीचे सी मार्ट में। यहाँ पाइए बेहतरीन बस्तर आर्ट, कोदो कुटकी रागी के पौष्टिक स्नैक्स, कई प्रकार के अचार, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और हर्बल का अनोखा संगम। तो आइए सी मार्ट, नूतन चौक, सरकंडा, बिलासपुर में। फोन नंबर है 6266067047।
7: संगी हो, अभी सुनत रहे संदेशा और आवा ये सुघर कस गीत ल सुन लेथन, जेला गावा थे बैतलराम साहू।

किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मो किसान भाई बहनी मन के मैं गौरी बहनी स्वागत करत हूँ। राम राम जय जोहार। किसान संगारी हो आप मन आनी बानी की खेती करत हो है ना भाई, और बढ़िया उत्पादन लेत हो। तो हमन जानकार मन से विशेषज्ञ मन से सुनथन और आपो मन सुनथा और कई प्रकार के खेती ला अलग अलग करता है ना भाई, जैविक के धीले रासायनिक खातु के दार के और तरह तरह के है ना भाई। तो काबर नहीं किसान संगवारी हुआ आप मन जैविक तरीका ले दलहनी फसल के उत्पादन लेवा, चना है, राहेर है, मूंग उरीद है, एकर खेती किसान मन अगर करही तो बहुत फायदा है। और कौन विधि ले तो जैविक तरीका ले है ना, जैविक विधि ले। देखा संगी हुआ एमा का होते, रासायनिक खातु माटी दवा के उपयोग कम होते, जेकर ले माटी के स्वास्थ्य बढ़िया रहते और खर्चा घलोक कम होते। फायदा की बात है न भाई। और कतको किसान संगवारी भाई बहनी मन करत घलोक है, और जेन किसान संगी मन नहीं करे उमन जरूर अपनावा भाई। विशेषज्ञ घलोक मन बताते के जैविक विधि ले करे ले दलहनी फसल में बहुत फायदा होते है ना। तो संगी हो जैविक विधि ले खेती करे में सबले पहली भूया की तैयारी है ना भाई। भूया की तैयारी बढ़िया जोत लाओ, माटी भुरभुरा बना लाओ, और वैसने बीजा उपचार बोए के पहली बीजा हा स्वस्थ रहे, एकर बढ़िया प्रमाणित बीजा रहे और बीजा ला उपचार कर लेना चाहिए। विशेषज्ञ मन ले पूछ लेना चाहिए कि कामा उपचार करन है ना भाई। ऐसने बोवाई के तरीका, बोवाई के बेरा के बिल्कुल चेत रख है, और कतार ले कतार बोनी के दूरिया कतका है, कैसे है, और समय में बिल्कुल बोवाई है ना भाई। पानी के प्रबंधन और खातु माटी के उपयोग, कीड़ा मकोड़ा रोग राई के नियंत्रण, ये सब प्रकार ले कहूँ हमारे किसान भाई मन जैविक विधि ले दलहनी फसल लेवा थे तो बहुत फायदा है संगी हुआ। एमा उत्पादन है बाढ़ थे,

0: अउ लागत ह कम होथे। संगे संग माटी के जेन उपजाऊ क्षमता है ओह बाढ़थे, फसल ह स्वस्थ अउ बढ़िया मिठास रहिथे, स्वादिष्ट रहिथे। अउ अतके बर नहीं संगी हो, बाजार म जैविक उपज के दाम ह ज्यादा मिलथे संगी हो। तो काबर किसान भाई महिनी मन जैविक विधि ले दलहनी फसल ला लेवाय। अब देखा आगू कार्यक्रम में बढ़बो तो सुग्घर आज काए आज सब ल पता है फोन इन कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी है ना भाई। अब विषय है जय नियंत्रक कारक में खरीफ फसल में उपयोग और महत्व। एमा आपमन प्रश्न पूछे हो ओकर जवाब एमा मिले है आपमन ला। और विशेषज्ञ है जयंत साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। और संचालन करत है हमर बीरेन्द्र भाई है। तो चला जेन हमर संगी मन फोन करे हुई उमन उत्तर पाही भाई।
1: किसान भाई बहनी हो जय जोहार, राम राम। किसान संगारी हो, आज एक सुघर विषय समय ल देखते हुए आज के वर्तमान समय ल किसान मन के देखते हुए आज सुघर विषय में पहुना बनाए हन। विषय है जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। आज के हेलो किसान वाणी में आप मन फोन लगाओ और आपके समस्या के निदान करे बर आज हम पहुना बनाए हन। हमर बीच है विशेषज्ञ श्री जयंत साहू जी, इमन है विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के मा। तो सबले पहली आज के पहुना के हम स्वागत करबो, उखर बाद कार्यक्रम ना आगू बढ़ाबो। श्री जयंत साहू जी, राम राम, जय जोहार।
2: जी राम राम, जय जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आप मन के स्वागत है आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। अब ये हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमार किसान भाई मन अपन समस्या रखी और वे समस्या के निदान आप जरूर करी हो। और शुरू से हम बता दिए किसान वाली मल किसान संगवारी मल्ला कि जय नियंत्रक कारकों का खरीफ फसल में उपयोग एवं महत्व। तो जैन साहू साहब, हम तो यही जानबो कि किसान भाई मन पर ये जिन बताथन तेन थोड़कन कठिन लगत है। काबर ये जिन विषय है जय नियंत्रक, हालांकि वो रोज करत है मगर एक सब्जेक्ट जब आ जाते तो ये जैव नियंत्रक कारक का है ओला जानबो। एक पहली फोन आते वो का पहली ले लेतन। हेलो
3: हेलो, राम राम भैया, ढुको छोड़े धनेंद्र डिक्सेना बोला थूंगा।
1: हाँ डिक्सेना भाई, राम राम, जय जोहार। बने बने पानी गिरे है का?
3: हाँ भैया, पानी तो यदि गिरी सब बढ़िया गिरे है और बहुत बाढ़ आ गिरी, खेत मन बुड़ गिरी।
1: वाह, तो तुम मस्त एकदम खातू वाला रफ रफ ले माड़े वही माटी है का? उपजाऊ हो जाते जमीन है, जब बाढ़ आते ना तो कुछ नुकसान भी होते है, कुछ जमीन फायदा घलो होते है ना।
2: तो एक पूरा
3: जैव नियंत्रक कारक बताओ।
2: हाँ, जैव नियंत्रक कारक के ही आप मतलब बताओ। जैव नियंत्रक कारक मतलब एक ऐसे सूक्ष्म जीव समझ लो, लाभकारी सूक्ष्म जीव है ना, जे मन हा नियंत्रित करे के वह काम करते, एला कहते जैव नियंत्रक कारक। ठीक है, तो कैसे उपयोग कर सकथन, कौन कौन से फसल में उपयोग कर सकथन, ओकर से कौन कौन से रोग और बीमारी हमन है, जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय में ये आसानी से उपलब्ध हो जाते
1: जी।
2: एमएस एक ट्राइकोडर्मा है। हाँ। ट्राइकोडर्मा के दो प्रजाति आते, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जीएनएम करके आते, और एक स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस करके आते, और बैसिलस सेप्टिलिस करके। ये मुख्य रूप से मतलब फसल के रोग रैला नियंत्रित करे बर काम आते है ना।
1: जी जी।
2: और एक बहुत सारा ऐसे हानिकारक कीट भी आते, तो ओकरो बर जैव नियंत्रक कारक उपलब्ध है। तो ओकर जैसे ब्यूवेरिया बेसिस, ओकर अलग अलग कीट के हिसाब से है ना। हाँ हाँ हाँ।
1: हेलो
3: हेलो किसान वाणी।
1: जी जी, आप मन के स्वागत है भैया। कौन कहाँ बोला होगा?
3: जदुनंदन प्रसाद वर्मा बोला होगा।
1: हाँ वर्मा जी, आप मन के स्वागत है। राम राम, जय जोहार।
3: हाँ राम राम, और डॉक्टर
1: जैन साहू भी
3: हमर। राम राम।
2: राम राम, जय जोहार वर्मा भैया।
3: जय जोहार डॉक्टर साहब।
2: जी जी,
3: यही है डॉक्टर साहब, हमन खरीफ फसल लगाए हन। खरीफ फसल में तो ऐसे हमन धान सब्जी फल सब भी खेती करे हन।
2: जी जी।
3: अब नाना प्रकार के समस्या आते की रेवा।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: और हमन जैविक खेती करत हमन। हाँ, जैविक प्रकृति खेती।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: ये

0: समस्या के निदान बार कुछ भी कीड़ा बीमारी लगते तो एक नियंत्रण के उपाय पूछना चाहता था ना आप करा।
1: हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपके प्रश्न है। और ये जो अभी आज के विषय है ना कि जैव नियंत्रक कारक के उपयोग करके हमन हा मतलब खरीफ फसल में कीड़ा बीमारी के प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, है ना, तो वही बात करत हन कि जो जैव नियंत्रक कारक है खास करके बीमारी के लिए अगर बात करबो, है ना, तो जो बीमारी के लिए जैसे अपन यूज करथन ओला अलग अलग विधि से यूज कर सकथन। एक तो बीज उपचार के माध्यम से कर सकथन, है ना, जैसे कि अगर आप मन धान वगैरह बो तो या कोई भी फसल बो तो सब्जी फसल बो तो या दलहनी तिलहन जो भी फसल बो तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है। तो ये जैव
0: जनित बीमारी नहीं लगे,
1: हाँ मृदा जनित जो रोग है ओकर से मतलब नियंत्रण के लिए
0: नियंत्रण
1: तो
0: करना है।
1: बीज उपचार का है अपन ला जो जैव नियंत्रक कारक खास करके ट्राइकोडर्मा, है ना, ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जिनम करके आते और एक स्यूडोमोनास करके भी आते, तो ये दो जो जैव नियंत्रक कारक है एकर आप मन 10 ग्राम 1 किलो बीज के पीछे आप मन दस ग्राम आप मन जैव नियंत्रक कारक जो है ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास वो अच्छा से आप मन मेल लो बीज में ओकर बाद आप उपचारित कर सकते हो, है ना। और अगर मतलब थरहा वाले जैसे है ना, थरहा देना जैसे कोई सब्जी वगैरह हो गए या फिर धान में ही हो गए तो आप मन रोपा लगा के पहली पौधा के जड़ में भी मतलब जड़ उपचार भी कर सकते हो आप मन रोपा लगा के पहली, है ना, कि रोपा लगा के पहली 10-20 मिनट पहली
0: जी
1: तो ये आप मन कर सकते हो। और एक अलावा आप मन मिट्टी के भी एक उपचार कर सकता ना आप मन जैव नियंत्रक कारक से।
0: हाँ
1: तो ये अपन कैसे कर सकते हैं कि आप मन 20 किलो के आसपास अच्छा सड़े हुए गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद ले लो, है ना, और 20 किलो में आप मन आधा किलो के आसपास ये जैव नियंत्रक कारक जो है ना पाउडर फॉर्म में हो गया या फिर लिक्विड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, दोनों फॉर्म में आते
0: हैं,
1: तो लिक्विड है तो आधा लीटर ले लो और अपन पाउडर है तो आधा किलो ले लो और 20 किलो जो गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट खाद है वो में मेल लो ओला 4-5 दिन तक छायादार जगह में हल्का हल्का पानी मिक्स करके ढक के बोरा में जूट वाला बोरा ऊपर ढक के हल्का हल्का पानी छिड़कत रहो, नमी बना के रखना है तो यह 4-5 दिन में पूरा अच्छा मिल जाते। ओकर बाद आप मन ओला छिड़काव
0: काटना भी है डॉक्टर साहब, मिलाना है कि एक घर तो के रख दिन नहीं लगा।
1: हाँ एला एक बार आप मन मिला दो अच्छा से, है ना, ओकर बाद आप ऊपर से ओला का बोलना चाहिए जो ढाकना है वो जूट वाला जो बोरा आते ना नमी बना रखने के लिए बीच बीच में हल्का हल्का पानी छिड़कते रहना है और बीच बीच में मिक्स करने की जरूरत नहीं है,
0: नहीं है ना,
1: हाँ नहीं है नहीं, हाँ हाँ तो इसे आप मन कर सकते हो। तो ये तो हो गए मतलब कैसे बोला जाए कि ये
0: बीमारी
1: के लिए हो गए और कुछ जैसे कीड़ा वगैरह भी आते हैं,
0: कीड़ा लगते
1: है ना, तो कुछ
0: के दिन डॉक्टर साहब के कीड़ा बढ़ लगते
1: तो कुछ ना जैसे जी तो कुछ ऐसे जैव नियंत्रक कारक है जो जैविक कीटनाशक के रूप में भी काम करते।
0: अच्छा
1: ठीक है, जैसे कि एक मेटराइजियम हो गए, मेटराइजियम एनिसिपोली करके आते ये है ना, ऐसे जैव नियंत्रक कारक या जैविक कीटनाशक है जो लगभग ना 300 प्रकार के जो कीड़ा के प्रजाति है ना ओकर मतलब ओकर खिलाफ एला यूज करे जा सकते हैं मेटराइजियम, है ना, एक तरह के फफूंद रे है जो प्राकृतिक रूप से जो फसल में लगने वाला जो कीट है ना वो कीट में है रोग उत्पन्न करते और जेकर से वो जो कीट के हाँ तो कीट के आगे के जो पीढ़ी है ना वो फिर नहीं बढ़ पाए ऐसे टाइप के है। एक अलावा एक बेवेरिया बेसियाना करके आते वो भी एक तरह के जैविक फफूंद रे है ना जो कि
0: स्प्रे कर पर डॉक्टर साहब तक कटे करने में लगते
1: हाँ। तो ये जैसे जो भी जैव नियंत्रक कारक है खास करके जो जैविक कीटनाशक के रूप में जो अपन उपयोग करा था जैसे मेटराइजियम हो गए बेवेरिया हो गए ठीक है एक आते पेसिलोमाइसिस करके आते

0: और एक लिकानी सेलम लिकेनी करके, जितना भी जैव नियंत्रक कारक है, जैव कीटनाशी है ना, ओला एक निश्चित मात्रा होते है 10 मिलीलीटर, ठीक है।
1: अच्छा
0: 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर हमला ये जो जैविक कीटनाशी है ना ओला मिलाना है, और ओकर हिसाब से अपन जितना भी आपके स्प्रेयर में पानी आते हैं ना वो हिसाब से आप मिला सकते हो। 1 लीटर पानी में 10 ml, और
1: दस
0: उपयोग,
1: एम एल एक
0: हाँ,
1: ग्राम
0: और एक
1: प्रति लीटर।
0: समय,
1: हाँ
0: समय के भी बहुत महत्व है।
1: हाँ
0: समय हमेशा ना हमला शाम के समय में है ना, 4 बजे के आसपास ये ला स्प्रे करना है तो बहुत अच्छा कारगर साबित होते स्प्रे करने से।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के दिन में तो समय शाम के है, ठीक है। अभी बरसात के दिन में कभी शाम के पानी गिर जाते तक नमी है, बढ़िया छाए तो इसको भी उपयोग कर सकते हैं का?
0: उपयोग हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे है कि
1: बरसात के दिन के खातिर कहा था।
0: बारिश में भी ये समय ना क्या होता है कि जैसे धूप मान लो पानी नहीं गिरते तब भी तापमान थोड़ा से ज्यादा बनेच रहते, और एक शाम के करे के एकाउ एकर बोलना चाहिए कारण है कि जो
1: अच्छा
0: जो कीड़ा मकोड़ा होते ना, जो हानिकारक कीड़ा रहते वो है
1: हाँ
0: ना पौधा मन के थोड़ा ऊपर आ जाते हो मन है शाम के समय
1: हाँ शाम के चखे
0: है
1: ना
0: ना।
1: देखे हमन खेत मन
0: हाँ,
1: में।
0: तो का है जो जैविक कीटनाशक जैसे हम स्प्रे करते हैं ना तो डायरेक्ट तो कांटेक्ट होते होकर से है ना, कीड़ा मन से डायरेक्ट कांटेक्ट होते जैविक कीटनाशक से,
1: हाँ,
0: तो
1: ठीक
0: फिर वो
1: कहा।
0: असर है ज्यादा अच्छा होता है। तो
1: अच्छा
0: चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, अगर हम
1: हाँ
0: थोड़ा
1: हाँ
0: से दोपहर के बाद मतलब शाम के समय है ना मतलब उपयोग करें तो फिर ज्यादा प्रभावी नियंत्रण हो सकते हैं। हाँ, वैसे है
1: और एक बात
0: मतलब।
1: बतावा डॉक्टर
0: जी
1: साहब, हमन के जैसे पौधा है सब्जी के, और
0: हाँ
1: एमन मा छोटे छोटे माने पौधा मन मर जाते कथे, मा कृमि लगते कथे, जेरी मत एक कहा होते, और एक नियंत्रण कैसे करी?
0: हाँ जैसे छोटे पौधा है खासकर सब्जी वगैरह पौधा
1: छोटे या
0: है
1: बड़े
0: ना।
1: मन लग जाते,
0: हाँ
1: निमी
0: हाँ
1: टोट कथे जेला आप मन
0: निमेटोड,
1: के पास
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ निमेटोड है, निमेटोड भी एक तरह के बोला जाए कि सूक्ष्म जीव ही है समझ लीजिए, जो आँख से नहीं दिखे है ना। और निमाटोड भी क्या होता है कि अगर ओकर से मतलब ओकर जो संख्या ज्यादा हो गए हमारे मिट्टी में तो बहुत तरह के नुकसान करते हैं। एक तरह तो ऐसे होते कि जो जो जड़ होते ना उनमें वह गांठ भी बना देते कुछ कुछ फसल में है ना, तो गांठ बनाते तो क्या है जो पोषक तत्व के जो उपलब्धता जो होना चाहिए पौधा मल्ला वो नहीं हो पाए, और ओकर से पौधा मन है या तो छोटे रह जाते या फिर वह मतलब थोड़ा से वृद्धि होकर उतना नहीं हो पाए जितना होना
1: मृत्यु
0: चाहिए
1: हो जाते
0: है ना,
1: धीरे
0: मृत्यु
1: धीरे।
0: भी हो जाते कहीं जैसे ज्यादा छोगे
1: हाँ
0: तो एकर लिए तो सबसे पहले है कि हमर ना जैसे ये सब दिखते तो भूमि उपचार बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर अपन जैविक तरीके से
1: ये
0: करना है ना।
1: भूमि उपचार में जैसे फंगस के बताए हाथ है, मैं कीटनाशक पर का करे जाए उपचार में
0: निमट निमाटोड के लिए
1: निमेटोड?
0: तो जैविक वगैरह इतना अभी उपलब्ध नहीं है, फिर भी
1: अच्छा
0: अपन जैसे कुछ कुछ जैविक कीट जैसे अपन वो करते हैं क्या बोलना चाहिए जो वानस्पतिक वाला जो अपन उपयोग करते हैं ना है ना, वानस्पतिक रूप से कि निमाटोड के लिए जो प्राकृतिक हमन जो बनाते हैं ना खास करके ब्रह्मास्त्र वगैरह हो गए और
1: अच्छा
0: अग्नेयास्त्र वगैरह हो गए, ओकर अमन अंतिम जुताई के समय अगर अच्छा से उपयोग कर बोला तो ओकर संख्या कुछ कुछ ऐसे कम हो के रिपोर्ट कहीं कहीं मिले है।
1: जोताई के समय डॉक्टर साहब जमीन है सूखा रहते, बेला कते कन पानी डालबो ता हो सका प्रति एकड़?
0: ये जैसे अपन अंतिम जुताई करते ना
1: हाँ
0: तो जो पानी जो अपन ये है क्या बोलना चाहिए स्प्रे करे के जरूरत नहीं है
1: हाँ
0: अपन ला ना।
1: ब्रह्मास्त्र एकदम
0: हाँ
1: सब
0: हाँ
1: लिक्विड में आते।
0: हाँ हाँ हाँ तो एला आप मन हा जो 1 लीटर पानी है ओमे आप मन हा कम से कम 50 ml जो आपके वो है ना
1: अच्छा
0: ब्रह्मास्त्र अग्नियास्त्र बना हो ओला कम से कम 50 ml 1 लीटर पानी में घोलना है, और इस वो हिसाब से आप मन हा नोजल निकाल के अच्छे से
1: अच्छा
0: स्प्रे कर सकत हो
1: और ये मैं
0: है ना।
1: ड्रिप में डायरेक्टली काम नहीं है का डॉक्टर साहब?
0: ड्रिप में भी आप मन, लेकिन ओमे एक चीज है कि आप अच्छे से छाने लगी है ना,
1: हाँ
0: छाने
1: हाँ
0: के बाद ताकि ड्रिप के नोजल में वो ना फंसे।

0: हाँ, नोजल में नहीं फंसना
1: हाँ
0: चाहिए, ठीक है।
1: ये आप मन हा, इवन ड्रिप में आप मन हा, ये जो जैव नियंत्रक कारक जो मैं आप मन ला बताऊँ ना, एकर भी आप मन हा उपयोग कर सकते हो ड्रिप में, खास करके ट्राइकोडर्मा वगैरह हो गए जो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में जो आते हैं ना।
0: हाँ, लिक्विड
1: हाँ
0: वाला
1: हाँ
0: आते ना,
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ सीडोमोनास वगैरह के।
0: नहीं,
1: हाँ
0: डॉक्टर साहब,
1: जी जी
0: वो
1: जी जी
0: वहाँ मिलते चोर भट्टी माँ,
1: जी जी जी
0: हाँ, बायो पेस्ट कंट्रोल ले भे तर मंगाथन के देवा।
1: हाँ। तो ठीक है भाई जयदुनंदन भाई,
0: हाँ भैया, बहुत बढ़िया लगी बात करके डॉक्टर साहब मनकर, आप मनकरा,
1: बिल्कुल आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद फोन लगाए कर पर।
0: धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बोलो भी।
1: जय
0: जी,
1: जोहार भैया।
0: जय जोहार।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ भैया जय जोहार। राम राम भैया, भगत भाई।
0: हाँ, जय जवाहर, राम राम बीरेन भैया, यही लगे थे मैं, आप मतलब डॉक्टर साहब जी मतलब राम राम जाते।
1: राम राम, जय जोहार।
2: तो भगत भाई, आप काफी प्रयास के बाद आपके फोन हमारे तक पहुंच पाई से, और
0: बहुत मुश्किल में पहुंच पाए भैया, और जब बहुत मुश्किल में जिन चीज मिलते ना, ओकर मिठास बहुत सुंदर होते भैया,
2: और कहावत भी है ना भाई, मेहनत के जिन फल है वो मीठा होते हैं।
0: बहुत
2: और
0: सुंदर भैया।
2: तो लेवो आप अपन फसल और गुड़तुर गुड़तुर अच्छा सुगंधित पौष्टिक बनाए पर आज के जिन विषय रखे हैं विषय में सवार रखो हमारे बीच है
0: तो
2: श्री।
0: हम आज जानना चाहते हैं भैया कि जिन हमारा फसल है आपकी दवा, तो जिन हम सब्जी लगाए हैं तो लगे हैं,
1: हाँ
0: और धान के जिन फसल है वो हमारे अब कई दवा के शुरू होने वाला है, तो
1: हाँ
0: हम
1: हाँ
0: जानना चाहते रहे कि जिन जैव नियंत्रण कारक है
1: हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: उपयोग हमला जिन खेती है वह धान की
1: हाँ
0: खेती
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: जिन सब्जी खेती है
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: हमला कौन कौन ढंग से करना है, मैं दोनों का अंतर एक बारे में जानना
1: जी
0: चाहते
1: जी जी आप जैव नियंत्रक
0: रहे।
1: कारक के, तो सबसे अच्छा तो आप माना बीज उपचार विधि से उपयोग कर सकते हो, कोई भी फसल में कर सकते हो। ये विधि में का है 10 ग्राम जो पाउडर है जैव नियंत्रक कारक के, खास करके ट्राइकोडर्म हो गए, स्यूडोमोनास हो गए, जो रोग उत्पन्न करे थे ना, जो हानिकारक फफूंद वगैरह मन
0: हाँ,
1: ओकर संभावना ला कम कर देते। ठीक है, तो 10 ग्राम 1 एकड़ पीछे अगर सॉरी 1 किलो बीज के पीछे 10 ग्राम जो पाउडर है ना ओकर दर से अगर उपचार करूँ तो एकर क्या है जो एमए का है ना कि अच्छा से पाउडर जो में मिक्स हो जाना चाहिए बीज में है ना, तो इसमें हल्का आप मन हल्का हल्का पानी की मात्रा भी डाल सकते हो थोड़ा छिड़कते हुए, ताकि पाउडर है चिपक जाए बीज में है ना। और जैसे चिकना बीज है जैसे मटर अरहर सोयाबीन हो गए है ना, जो चिकना टाइप के बीज रहते हैं, तो मैं आप हल्का से कोई चिपकाए वाला खाज हल्का गोंद हो गए या फिर थोड़ा गुड़ के पानी हो गए इसे टाइप के भी आप मन हा उपयोग कर सकते हो ये जैव नियंत्रक कारक के पाउडर के साथ साथ। और जैसे उपचारित हो गए ना बीज है तो ओला हल थोड़ा देर छायादार जगह में ना फैला के रख ले। ठीक है, जैसे अगले दिन बुआई करना है आपला तो वही शाम को आप बीज उपचारित कर लो है ना, रात भर आप फर्श में अच्छा से ओला उपचारित करके छोड़ दो, फिर अगले दिन आप बुआई कर सकते हो, ऐसे भी करे से हो सकते। और दूसरा तो आप मना ये भी कर सकते हो मृदा उपचार, जैसे बताओ ना कि अभी धान जैसे बोना है अभी बुआई नहीं है मान लो बात, तो आप मना गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद है ना उसमें आप मना जैसे 10 किलो या 20 किलो, जैसे 20 किलो लेना है तो 20 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में आधा किलो आप जो जैव नियंत्रक कारक है ना वो मिला लो, ट्राइकोडर्मा हो गया, स्यूडोमोनास हो गए या बैसिलस हो गए, और ओला आप मना अच्छा से मिला के ओला ठंडा छायादार जगह में रख दो मिला के है ना, और मैं थोड़ा से का बोलना चाहिए हल्का हल्का पानी छिड़कते रहना है बोरा ढक के एला, फिर आप मना अंतिम जुताई के समय में छिड़क दो एला जो है तेला। एकर अलावा फिर आप मन पौधा के भी उपचार कर सकते हो, थरहा उपचार जो बोलते हैं ना,
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ एला भी आप मन उपचार कर सकते हो। तेकर लिए का करते हैं कि जो अपन हल्का से गड्ढा खोद लो या फिर जो ऐसे छोटे से का बोलते वाला धमेला या जो बोलते का धमेला टाइप के उसमें आप मना एक निश्चित मात्रा में पानी ले लो, जैसे 10 लीटर पानी लेते हो ना तो 1 लीटर पानी के पीछे 10 ml डालना रहते। ठीक है, 1 लीटर पानी के पीछे 10 ml जैव नियंत्रक कारक, तो जितना आपके पानी
0: अच्छा
1: आत है
0: अच्छा
1: उसके हिसाब से आप उसमें जैव नियंत्रक कारक के पाउडर या लिक्विड मिला लो, और उसमें फिर आप ला थरहा ला जो पौधा

0: है ना नर्सरी वाला
1: डुबाना है,
0: वाला डुबा के रखना रहते है ना,
2: मात्रा के विशेष ध्यान देना,
0: मात्रा के विशेष ध्यान देना है। तो उसके बाद आप माना वाला जो मुख्य खेत है उसमें
1: रोपित कर
0: रोपाई कर सकते हो। एकाऊ विधि जैसे अभी बताना वर्मा भैया वाला कि आप ड्रिप इरिगेशन के अगर यूज करते हो टपकन सिंचाई के, तो उसमें भी आप मना एक उपयोग कर सकते हो। और ओकर अलावा जैसे जो जैविक कीटनाशक है ना, जो मेटाराइजियम अभी आप मन से बात करें, मेटाराइजियम हो गए, बिवेरिया बेसियाना हो गए या बीटी हो गए, ये मन के आप मन ऐसे पर्णी छिड़काव भी कर सकते हो है ना, जो कीटनाशक जैविक कीटनाशक के रूप में। ये आप मन ध्यान देना है कि जितना भी जैविक जैव नियंत्रक कारक है या जैविक कीटनाशक है ओकर उपयोग के मात्रा होते 10 ml प्रति लीटर, ठीक है। तो उपयोग के मात्रा ला ध्यान देना, समय ला ध्यान रखना है, बाकी जी जी हाँ।
1: तो भगत पटेल भाई,
2: हाँ भैया,
1: हाँ बड़ा सुगर अच्छा समय में आप मन फोन लगा है, आपके जिज्ञासा जरूर शांत होगी सोई है ना।
2: और आप मन बहुत सुंदर अच्छा समय में जिन डॉक्टर साहब है ओकर लेके आके हमारे किसान के बीच में लाए हो, एकर लिए आप ला आकाशवाणी परिवार ला हमारे पटेल परिवार के संग संग श्रोता मन की तरफ से राम राम और जय जोहार, बार बार धन्यवाद।
1: आप मल्ला धन्यवाद भैया, जय जोहार, राम राम। डॉक्टर जैन साहू जी देखो जी, किसान मन की उत्सुकता है कि ये आखिर होते का जैविक जैव नियंत्रक और मेन बेस तो यही है
0: जी।
1: अगर यही से हम रोकथाम करत हन तो काफी रोग व्याधि हम रोक सकत हन। तो समय है आज के पहला भाग के लगभग यही में पूरा हुआ थे। तो डॉक्टर साहब आज आप मन आया हमारे किसान भाई मल्ला बड़ा सुग्घर ढंग ले जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसल में उपयोग और महत्व ये विषय में आज बड़ा सुग्घर अच्छा आप मन जानकारी दिए हो। निश्चित ही आपके बताए जानकारी ले हमारे किसान भाई मन लाभान्वित हो है। हमारे कार्यक्रम में आया खरबर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय जोहार
0: जी, जय जोहार वीरू भैया।
1: तो किसान संगवारी हो ये तो रही से आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम जे मा तकनीकी सहयोग माइकल एक्का जीवन के रही सवय और समय हो गए कार्यक्रम ले विदा ले के। तो जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।
3: अभी अभी आप मन सुनत रहे फोन इन कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी, विषय रही जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसल में उपयोग और महत्व। विशेषज्ञ रही जयंत साहू जीवन, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर, और कार्यक्रम के संचालन वीरेंद्र भाईया करत रही से। देखा अब ये दे संदेश सुन लेथन।
4: अरे सुन तो,
5: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुना मेरी सौतन को।
4: किसको?
5: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
4: अच्छा ये बात है?
5: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
4: अब तो झट से बात हो जाती है।
5: ऐसा क्या?
4: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
5: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
4: हाँ,
5: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
6: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं।

0: तेरे बीजू का
1: पुतला बोल ले।
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: चल आज के आप मतलब तापमान बता देते हैं। अधिकतम तापमान है 30.6 और न्यूनतम तापमान 25.9। अब मंडी को तिजाबो तो तखतपुर मंडी में धान महमाया 2000 प्रति कुंटल है, कोटा में सरना धान है 1900 रुपया प्रति कुंटल है, अब कोटा च में गेहूँ लोकल है 2400 रुपया है। बिलासपुर मंडी में फल फलहरी के बात करबो तो पपीता है 2000 ले 2200 रुपया है, और दरमी है 9000 ले 9500 रुपया है, नाशपत्ती है 1500 ले 1700 है, आमा है 3500 ले 3800 रुपया है, और संतरा है 7000 ले 7500 रुपया है, और सेब है 10000 ले 1100 11500 रुपया प्रति कुंटल के भाव ले आप मतलब बताए हैं। साग भाजी के भाव आप मन रोजे जान था, और यही संग यही मंडी भाव के संग में हमर बेरा हसीर आगे, तो देवा गौरी बहिनी लबीदा, राम राम जय जोहार।
4: कार्यक्रम किसानवाणी अभी हम सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और मोनाली ठाकरे की।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और मोनाली का नमस्कार।
0: मोनाली, रिमझिम बारिश ने किसानों की आस और हम सब की आस पूरी की है, और जैसे ही जुलाई के महीने में जो परेशानी हो रही थी बारिश नहीं होने की, अभी लगातार पिछले हफ्ते से जो बारिश हुई है उसने फिर से चारों तरफ हरियाली की चादर पसारना शुरू कर दिया है, और बहुत सुंदर लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि किसान खुश हैं और अपना काम कर पा रहे हैं।
1: किसानों के साथ हम भी खुश हुए हैं मैम, क्योंकि लास्ट सप्ताह में जो बारिश हो रही थी, तो पहली बारिश में जो होता है कि पोल्यूशन होता है वातावरण का, वो नीचे धरती पे आता है, तो हम भीगने से थोड़ा बचते हैं, बट अब इस सप्ताह में हम तैयार है कि बारिश में हम भीगेंगे, बहुत अच्छे से आनंद लेंगे और मजे करेंगे
0: और सावधानियां भी रखेंगे। बहुत जगह घूमने जाते समय, सेल्फी वगैरह लेते समय बहुत केयरफुल रहें, ध्यान रखें छोटे बच्चों का भी, और छोटे छोटे तालाब और नदी के किनारे भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ तो पानी बिल्कुल कम होगा, लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं रेत ढह जाती है और बच्चे डूब जाते हैं, तो ये घटनाएं लगातार सुनने को भी मिल रही हैं। तो मजा तो लेना है झमाझम बारिश का, लेकिन सुरक्षित भी रहना है, और इस आनंद में हमारे रेडियो को बिल्कुल नहीं भूलना है। और चिट्ठी मिली कार्यक्रम की शुरुआत ढेर सारे पत्रों से आज हो रही है, क्योंकि यहाँ भी झमझमाझम बारिश हुई है पत्रों की।
1: जी मैम,
0: तो चलो शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल। तो मैम, पहला पत्र आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू का। ये लिखते हैं कि 3 जुलाई का इनसे मिले कार्यक्रम, जिसमें सुप्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुबीर यादव से सुप्रिया भारतीयन की बातचीत हुई, ये काफी पसंद आई, बहुत ही अच्छी सारगर्भित बातचीत सुनने को मिली, ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 4 जुलाई का डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम भी पसंद कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर विनय राठौड़ से श्री रमाशंकर जी की बातचीत सुनने को मिली, बहुत पसंद आई।

0: 7 जुलाई का मोर भुजा कार्यक्रम भी अच्छा लगा। सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी साहित्यकार और कवियों सहित बहुत सुंदर संपादन के लिए श्री महेंद्र साहू जी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: और सटीक प्रसारण के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को भी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं।
1: ये सारी बधाइयां सभी तक पहुँच रही है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बहुत विशेष प्रसारणों को हमारे श्रोताओं ने सुना है। हमारे लिए सौभाग्य का समय था जब रघुवीर यादव जी बिलासपुर में थे और आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत किए। इतने सहज सरल इंसान, इतनी ऊंचाई पर भी रहकर उन्होंने जिस सहजता से आकाशवाणी बिलासपुर को अपना स्नेह दिया, वो हम हमेशा याद रखेंगे। और हमारे श्रोताओं ने बातचीत सुनी, उसकी तारीफ की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और मनाली, ये अगले कुछ पत्र हमारे पास आए हैं। धमतरी छत्तीसगढ़ बनियापारा से लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, महेश, कुकरेजा, संध्या, दीपक, मोनू, उन्नति, कीरत राय बाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा माखीजा कुटुंब। बहुत सारे कार्यक्रम ये लगातार सुनते हैं और बड़े विस्तार से हर बात लिख भेजते हैं। रघुवीर

0: लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, महेश कुकरेजा, संध्या, दीपक मोनू, उन्नति, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा माखीजा कुटुंब। बहुत सारे कार्यक्रम ये लगातार सुनते हैं और बड़े विस्तार से हर बात लिख भेजते हैं। रघुवीर यादव जी से जो बातचीत हमने की थी वो इन्होंने भी सुनी। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि मैं मंजिल को देखकर नहीं चल रहा हूँ, रास्ते में जो भी पड़ाव आ रहे हैं उनका आनंद ले रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही गहरी बात रघुवीर यादव जी ने कही थी और उन्होंने इसे कोट किया है। और आगे लिखते हैं कि कानून की बात भी उन्होंने सुनी। कानून की बात इस बार आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। उषा किरण वाजपेयी जी ने किशोर न्याय बोर्ड और महिला घरेलू हिंसा संरक्षण पर काफी विस्तार से बताया, ये भी इन्हें अच्छा लगा। और आगे लिखते हैं कि 6 तारीख को रणवीर सिंह जी के जन्मदिन पर सुजाता जी ने जो रजनीगंधा प्रस्तुत किया वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। और आगे लिखते हैं कि 7 तारीख को 8:15 पर रजनीगंधा मानस तिवारी ने प्रस्तुत किया था, वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। नितिन मुकेश पर केंद्रित था। प्रसारण के लिए धन्यवाद देते हैं। और हेलो आपकी पसंद, इनका पसंदीदा कार्यक्रम है मनाली, 8 तारीख का इन्होंने कार्यक्रम सुना। पद्मा की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी, प्रस्तुतकर्ता को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। और बातचीत के लिए और पत्र के लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने सभी कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुने और पत्र हमें लिख भेजा।
1: और लेते हैं हमारा अगला पत्र जो आया है बिला से राजेश, विमला, राशि, विनायक, आदित्य, मानव यादव और इनके साथ युवराज, मधु, रिहान, हिमांशु यादव, अनिल, पूनम, डिंपल, भावेश, कुशराम, श्यामा और प्रदीप मरावी लिखते हैं। 6 जुलाई को प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़ेला जाबोरे ये बहुत अच्छा लगा। सरकारी स्कूल में संचालित योजनाओं, सुविधाओं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शिक्षण पद्धति में किए जा रहे नवाचार को कलेश्वर साहू ने बहुत अच्छे से बताया है। इससे निश्चित ही पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराने के लिए प्रेरित होंगे। इस आशा के साथ वो सरकारी स्कूल पर आधारित ये गीत को भी पसंद कर रहे हैं। पत्र लिखने के लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं।
0: बहुत बढ़िया। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश जरूर जाता है कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं मनाली बच्चों के लिए, चाहे वो मुफ्त में उनको भोजन हो, मध्याह्न भोजन की बात हो, या किताबों की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, स्मार्ट क्लास की बात हो, या फिर साइकिल योजना की बात हो, हर तरीके से बच्चों तक अच्छे से अच्छा शिक्षा का जो क्रम है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है
1: जी।
0: तो जब तक उसका फायदा उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये सारी बातें व्यर्थ होंगी। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से यदि ये चेतना जगती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और ऐसे स्कूल जहां क्वालिफाइड शिक्षक हैं और सुविधाएं मिल रही हैं और कम खर्च में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो क्यों ना हम इससे प्रेरणा लें।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता ही हमें बहुत अच्छा लगा, पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और चांदनी चौक गंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभात देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन ने बड़े सुंदर ढंग से छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र लिख भेजा है। लिखते हैं कि बड़ सुहाथे, बड़ मिठाथे हमर छत्तीसगढ़ के चटनी बासी, और इही संग जब चेच भाजी और हमारी भाजी मिल जाए तो फिर कहा कहना, सोने में सुहागा हो जाते और खाए मन डोगरी दाई और बाबा के सुरता मन में समा जाते, और इही रिकम ले इसने ही सुघर और शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक आनंदमयी प्रस्तुति जब आकाशवाणी बिलासपुर ले सुने बर मिलते, तब इमन के चोला हरिया जाते, मन फरिया जाते। वो कार्यक्रम के नाम घलो ले थे मोनाली जी, कही थे कि जुलाई महीना के पहली चिट्ठी मिली कार्यक्रम अब्बर अच्छा लगिस, और मयारू बहनी मोनाली ठाकरे के सुंदर सुंदर मीठ मीठ बोली के बुलैया और सुनील चिपड़े के सुंदर अंदाज के कारण कार्यक्रम अब्बड़ अच्छा लागिस। और आगे लिखते हैं कि सीमा बहिनी, मानस तिवारी, सभो उद्घोषक साथी मन के सुंदर वाणी मा, मधुर वाणी मा कार्यक्रम ला सुने हन, ईमेल करे गीत सुने, माटी के स्वर, तुहर गोठ, हमर गीत, भरपूर आनंद मिलिस। और सुघर आनंदमयी प्रस्तुति बर आकाशवाणी बिलासपुर के पूरे परिवार ला अब्बड़ अकन धन्यवाद देवत है। तो आपन ला भी भाई अतका बढ़िया, अपन अतका मीठ लिखता, आपन ला भी अब्बड़ अकन धन्यवाद ए पाती भर।
1: ये पत्र आया है मगरपारा बिलासपुर से। रेणु शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला, वैभव और विनी मिश्रा लिखते हैं, 8 जुलाई का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम पद्मा मणि जी की प्रस्तुति में बहुत अच्छा लगा, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम और माटी के स्वर कार्यक्रम भी पसंद कर रहे हैं और आकाशवाणी बिलासपुर को भी धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सही बात है। और ये अगला मेल मैं ले रही हूँ, कतियापारा जूना बिलासपुर से आया है। सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश कान्हा और आदित्य देवांगन का। इन्होंने 2 जुलाई के चिट्ठी मिली कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है और लिखते हैं कि श्रोता भाई अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा सभी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति के लिए मोनाली जी और सुनील जी को बधाई दे रहे हैं। 5 तारीख को इन्होंने माटी का स्वर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पद्म भूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका दीदी तीजन बाई के संदर्भ में सुना और नश्वर संसार से उनके विदा होने की बात सुनकर इन्हें बहुत दुख लगा। सच बात

0: श्रोताओं, हम भी ये मानते हैं कि पंडवानी और छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई तीजनबाई जी ने, और उनके इस योगदान को पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश हमेशा याद रखेगा। वो अमर हैं अपनी वाणी के साथ, अपनी प्रस्तुति के साथ। और आकाशवाणी बिलासपुर में उनकी रिकॉर्डिंग है, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से उनकी रिकॉर्डिंग लगातार बजती है, और पूरे देश विदेश में उन्होंने अपनी पंडवानी की धूम मचाई। तो हमारी तरफ से भी तीजन दीदी को हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जो मुकाम कमाया है, जो नाम कमाया है, और जो सौगात भारतीय लोक संस्कृति को दी है, वो अविस्मरणीय है। और आगे ये लिखते हैं मोनाली कि आओ बच्चों कार्यक्रम भी 5 तारीख का इन्हें बहुत अच्छा लगा। लिंटा जी को बधाई दे रहे हैं। 6 तारीख को आज सुबह कार्यक्रम आपकी पसंद अच्छा लगा, अंतरा को बधाई दे रहे हैं। 7 तारीख को शाम की सभा में ईमेल करे गीत सुने मानस ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। और 8 तारीख को 10 बजे हेलो आपकी पसंद के लिए पद्मा को बधाई दे रहे हैं। और लिखते हैं कि खेती किसानी का काम बढ़िया शुरू हो गया है, और इस संदर्भ में खेती की बात जो प्रसारित होती है इन्हें अच्छी लगती है, और चाहते हैं कि घर परिवार और छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता, सबका ध्यान हमें इस मौसम में भी रखना है, यही निवेदन है। पत्र आपका बड़ा ही सारगर्भित रहा, पत्र के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद।
1: तिजन बाई जी को याद करते हुए अगला पत्र भी आया है, उड़नताल दगोरी से। श्यामदा प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, पल्लवी और समीर गायकवाड़ लिखते हैं कि 5 जुलाई को विश्व विख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तिजन बाई जी के निधन पर एक स्मृति विशेष पेश किया गया, सुनकर मन भाव विभोर हो गया। लोक संगीत के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान विश्व स्तर पर पहुंचाते हुए हमारा मान बढ़ाया,
0: सच
1: ऐसे पूजनीय एवं वंदनीय आत्मा को हमारा शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।
0: पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं मोनाली
1: जी।
0: और ये पत्र हमारे पास आया है रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और दिकेश साहू का। 1 तारीख को हेलो आपकी पसंद इन्हें अच्छा लगा था, 1 जुलाई का। संज्ञा को बधाई दे रहे हैं। और 2 तारीख का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। 5 तारीख का ग्राम सभा आपमन के गीत बहुत अच्छा लगा, इसके लिए पंचू भैया को बधाई दे रहे हैं। तुहर गोट हमर गीत में मदन जी ने बहुत सारे श्रोताओं के नाम शामिल किए, 6 तारीख के इस कार्यक्रम के लिए उन्हें भी बधाई दे रहे हैं। और 9 तारीख का माटी के स्वर कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, इसके लिए पुष्पा जी को बधाई दे रहे हैं। पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद देते हैं।
1: लेते हैं अगला पत्र जो आया है लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी का। ये लिखते हैं 7 जुलाई का ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम मानस तिवारी जी की प्रस्तुति में अच्छा लगा, लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये पत्र आया है मोनाली भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत प्रिगु, विनय ठाकुर, चुवाराम, सूरज बाड़ेकर, सियाराम और नारायण नेदू का। 2 तारीख का चिट्ठी मिली, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। 3 जुलाई को सीमा जी को बधाई दे रहे हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा था। 3 तारीख को ही रजनीगंधा के लिए मानस जी को बधाई दे रहे हैं। 4 तारीख को मीनाक्षी की रजनीगंधा की प्रस्तुति भी अच्छी लगी। 6 तारीख को यादव के झरोखे से कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, अंतरा को बधाई दे रहे हैं। 6 तारीख को सुजाता जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। और 8 तारीख को पद्मा जी को फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद के लिए ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। और 8 तारीख को रत्ना की रजनीगंधा की प्रस्तुति भी अच्छी लगी, जो बारिश पर केंद्रित थी और खूबसूरत गीत प्रसारित किए गए। वाह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल मैंने भी ये कार्यक्रम सुना था, और जब बारिश तो हो नहीं रही थी, लेकिन गीतों को सुनकर जरूर मन में रिमझिम रिमझिम सा तो कुछ होने ही लगा था। तो आपको भी धन्यवाद पत्र भेजने के लिए, और प्रस्तुतकर्ताओं तक ये बधाइयां तो पहुंच ही रही हैं।
1: जी बिल्कुल। लेते हैं अगला पत्र लोहदा सरगांव से। शत्रुघ्न साहू, सुकलहीन, नीलम, अंकित और जानवी साहू लिखते हैं 6 जुलाई को प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़ेला जाबोरे बहुत ही अच्छा लगा। पालकों को सरकारी स्कूल के प्रति प्रेरित करने का बहुत ही अच्छा पहल था। गीत भी दिल को छू लेने वाला था। आकाशवाणी बिलासपुर को भी बहुत सारी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं।
0: इसी के संदर्भ में एक और पत्र है हमारे पास, शकर भाटा से केशव वर्मा, सत्या, आदर्श और मयंक का। इन्होंने भी इसी कार्यक्रम को पसंद किया, इन्हें भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और प्रेरणास्पद लगा। तो पत्र के लिए हमारे इन श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं मोनाली। अगला पत्र आया है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल, मानस, चेतन और गंगा देवी का। मधुर स्मृति के साथ ये पत्र स्नेह का अभिलाषी है। आगे लिखते हैं कि 4 तारीख को सुजाता राय द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम रणवीर सिंह पर केंद्रित रजनीगंधा, इन्हें बहुत अच्छा लगा। और 7 तारीख को हमने किसानवाणी कार्यक्रम में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में बहराडी जिला जांजगीर चांपा में राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की थी। इसमें सभी प्रस्तुतकर्ताओं को, पंचू भैया, जित्तू भैया, सभी को ये ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। और 7 तारीख को ही मानस तिवारी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा, जो नितिन मुकेश पर केंद्रित था, बहुत ही अच्छा लगा। 8 तारीख को रत्ना जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा, जो बरसात पर केंद्रित था, वो भी इन्हें अच्छा लगा। और इन सभी

0: कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।
1: पत्र के लिए इन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेते हैं अगला पत्र जो आया है मदनपुर कवर्धा से। श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। ईमेल करेगी सुने, चिट्ठी मिली, माटी के स्वर, युवा जगत, ये कार्यक्रम हम सर्वाधिक पसंद करते हैं। इससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है पर ज्ञान, सीख और प्रेरणा भी मिलती है। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सच बात है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, इन्हीं लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता इसमें साथ भी दे रहे हैं। पत्र के लिए आपका धन्यवाद। और ये अगला पत्र आया चिरमिरी कुरसिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश कालिंदी लहरे का। 28 तारीख को विदुषी तीजन बाई जी को ये याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि विशेष जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। हेलो, आपकी पसंद में लिखते हैं, एक छोटी सी शिकायत है कि जो कॉल के नंबर दिए गए थे उसमें कॉल लग नहीं रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? बारिश के बाद से हमारे दोनों ही फोन नंबर बीच बीच में थोड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने उनके सुविधा प्रदाताओं से शिकायत तो की है और बीच बीच में समस्या अचानक आ जा रही है, क्या कर सकते हैं, शायद पानी भर जा रहा है। लेकिन बात तो आपकी सही है कि उस दिन समस्या तो थी, आगे ध्यान रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम तक हमारे फोन बिल्कुल सही हो जाएं और श्रोताओं को कोई तकलीफ ना हो। पत्र के लिए इनका भी हम धन्यवाद देते हैं मोनाली
1: जी। मैम, और लेते हैं अगला पत्र नानघाट का तल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, ये लिखते हैं कि हेलो किसान वाणी में 2 और 3 जुलाई को दिनेश पांडे जी से राजू भैया की बातचीत बहुत अच्छी लगी। राजू भैया को बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही 3 जुलाई का भक्ति संगीत और खेती की बात कार्यक्रम इन्हें काफी अच्छा लगा, इसके लिए चित्रलेखा दीदी को बधाइयां दे रहे हैं।
0: क्या बात,
1: इन्हें भी हम पत्र लिखने के लिए धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, ये समय है हरे चारे की खेती, ताकि हमारी जो गायें हैं उनको हरा चारा मिले और बहुत पौष्टिक दूध मिले जो हमारे आने वाली पीढ़ी का पोषण कर सके। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं मन में जो कार्यक्रमों के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं और यदि इम्प्लीमेंट हो, क्रियान्वित हो सके मोनाली, तो वाकई में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बहुत अच्छा समय ला सकते हैं। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन ये क्रियान्वित होनी चाहिए। तो पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और ये अगले कुछ ईमेल हमारे पास आए हैं बुड़गहन से, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकांता और शशिकांता के। ये लिखते हैं कि चिट्ठी मिली कार्यक्रम 3 जुलाई का, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता को बधाइयां। 6 जुलाई को तुहर गोठ हमर गीत अच्छा लगा, मानस को बधाई। 5 जुलाई को ग्राम सभा में आप मन के गीत बहुत अच्छे लगे, पंचू भाई को बधाई। और 8 तारीख को हेलो आपकी पसंद बहुत ही निराले ढंग से पद्मा जी ने प्रस्तुत किया, उन्हें भी ढेर सारी बधाई। और आपको भी पत्र के लिए ढेर सारा धन्यवाद।
1: अगला पत्र आया है रतनपुर सिल्ली निर्धि से, नरेंद्र कश्यप, गणेशिया, आयुष, लीना और करण लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर के सभी प्रस्तुतकर्ता को हमारा सादर नमस्कार। 9 जुलाई का माटी के स्वर कार्यक्रम इन्हें काफी अच्छा लगा, सफल प्रस्तुति के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। हम भी आपके पत्र के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
0: सही, ऐसा ही एक और तारीफ भरा पत्र है मोनाली जी। ये आया है जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव और दुर्गेश्वरी। और ये लिखते हैं कि आप सब बहुत मेहनत से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो पत्र के लिए आपको भी धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए और पत्र भेजिए।
1: ये पत्र आया है नैला बोडसरा जांजगीर से, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, ठगिया देवी और विष्णु प्रसाद तिवारी लिखते हैं, हमें आकाशवाणी बिलासपुर का हर कार्यक्रम अच्छा लगता है। ईमेल करेगी सुने, माटी का स्वर, आपकी पसंद, विविध भारती के कार्यक्रम भी ये सुनते हैं। साथ ही जानवरों के बारे में जानकारी एवं रोजगार के बारे में जानकारी भी इन्हें अच्छी लगती है, सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो आप ऐसे ही इसी तरह से हमारे सारे कार्यक्रम सुनते रहिए और आपके विचार हम तक पहुंचाते रहिए। हमें इंतजार रहता है आपके प्यार भरे पत्रों का। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, अगला पत्र आया हमारे पास दतरेंगी भाटापारा से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा का। इन्होंने जानकारी चाही है कि पिछले 2 बुधवार से सवाल जवाब क्रम और युवा पसंद का प्रसारण नहीं हो पाया है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंतजार कर रहे थे। सच बात है, हमें भी खेद है कि किसी कारणवश ये कार्यक्रम पिछले 2 हफ्ते प्रसारित नहीं हो पाया, आगे से ये नियमित प्रसारित होगा, इसका पूरा भरोसा हम अपने श्रोताओं को देते हैं। आपने हमें सूचना दी और आपने इसके लिए कंसर्न दिखाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद। और मजे की बात ये भी है मोनाली कि हमारे इन श्रोताओं ने एक पोस्ट कार्ड भी हमको भेजा है। अच्छा लग रहा है कि आप ईमेल भी भेजें, साथ में आपने एक पोस्ट कार्ड भी भेजा है, बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में, बड़े समय बाद आपकी इतनी प्यारी सी हैंडराइटिंग हमें देखने को मिल रही है। इन्होंने अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख भेजा है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में

0: 3 तारीख को हमने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया था। इसमें आकाशवाणी में कार्यरत बिलासपुर के और बाहर के भी पूर्व प्रसारकों से बातचीत की थी अंतरा ने, लखनलाल भौरे जी, कविता सिंह जी, सैयद अल्ताफ जी। ये कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन लोगों ने रेडियो की प्रासंगिकता और जनमानस में उसके महत्व उपादेयता पर बड़े सुंदर ढंग से बताया। और एक बहुत सुखद पल रहा जिसमें इन पूर्व प्रस्तुताओं की अतीत की यादों से हमारे श्रोता रूबरू हो सके, उन्हें बहुत अच्छा लगा। पत्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस छोटे से पोस्टकार्ड ने आपकी हैंडराइटिंग को फिर से वापस ला दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं
1: जी। अगला पत्र आया है अडार नानघाट से, माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का। ये लिखते हैं 4 जुलाई का डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम काफी अच्छा लगा, किडनी रोग कारण लक्षण एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही 7 जुलाई का ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम भी पसंद कर रहे हैं, मानस तिवारी जी को बधाइयां दे रहे हैं।
0: क्या बात,
1: आपको भी पत्र लिखने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: और ये अगला ईमेल आया है मोनाली जी, ये आया है बिल्हा से, पवन रजक, प्रेमा रजक, प्रेम रजक का 8 तारीख का 8 बजे प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम चल पढ़ेला जा, वो इन्हें भी बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही प्यारा सा गीत था, धुन ने मन मोह लिया, इसके लिए हमें ये धन्यवाद दे रहे हैं और पत्र के लिए हम भी आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं।
1: अगला पत्र है लालपुर करही मेकरी से पुरन यदु जी का। ये लिखते हैं 8 जुलाई को प्रसारित चल पढ़े ला जावो रे बहुत अच्छा लगा। आज के दौर में पालकों को सरकारी स्कूल के लिए प्रेरित करने का नवाचारी शिक्षक द्वारा ये सराहनीय पहल रही।
0: बिल्कुल, क्या बात है। देखिए, एक छोटा सा कार्यक्रम लेकिन कितने दूर दूर तक उसने अपना संदेश पहुंचाया है
1: जी,
0: और ये संदेश अमल में भी आना चाहिए तभी इसकी सार्थकता है। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये ईमेल आया उमरिया बिल्हा से, सादरा मरकाम, रीना, श्रद्धा, समीर का। इन्होंने भी चल पढ़ेला जावो कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है और गीत के बोल इन्हें भी बहुत अच्छे लगे, मधुर संगीत ने सभी का दिल जीत लिया। पत्र के लिए हम आपका भी धन्यवाद देते हैं
1: जी। मैम, अब बढ़ते हैं हमारे पोस्ट कार्ड की तरफ। ये पत्र आया है ग्राम महतपुर भक्तिन बाजार से, रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त जी का। ये लिखते हैं कि 16 जुलाई को रथ यात्रा की शुभ अवसर पर आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोतागण को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी हमारे तरफ से रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाइयां। तो मैम, ये थे हमारे आज के ईमेल और पत्र। अगले गुरुवार को भी हमारे श्रोता हमें पत्र और ईमेल लिख सके, इसलिए हम बता देते हैं अपना पता।
0: सही बात,
1: हमारा ईमेल आईडी है patraemail@gmail.com और हमारा पोस्ट कार्ड का पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006।
0: वाह, तो पत्र भेजने के लिए पता आपको मिल गया। इंतजार रहेगा आपके ढेर सारे पत्रों का और उस दौरान आप भी इस बारिश का खूब आनंद लीजिए। जब बारिश में बाहर नहीं निकल सकते हैं तो रेडियो तो है ही साथ, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो 103.2 MHz की इन तरंगों के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, पत्र भेजिए और अगले चिट्ठी मिली कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुप्रिया
1: और मोनाली को
0: अनुमति दीजिए
1: और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

कार्यक्रम चिट्ठी मिली अभी हम सुन रहे थे, प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और मोनाली ठाकरे की। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:23 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज हम सुनेंगे विदुषी गिरजा देवी की आवाज में इस उप शास्त्रीय संगीत को।

0: कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में अभी हमने सुना विदुषी गिरिजा देवी की आवाज में उपशास्त्रीय संगीत को।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,

0: देश की सुरीली धड़कन
1: विविध भारती
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता
0: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट
0: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सहेली
0: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा
5: मुझे याद सब है जरा जरा
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
0: सुरीली संदली
6: कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आइए अब सुनते हैं विदुषी गिरजा देवी की आवाज में इस उप शास्त्रीय संगीत को

विदुषी गिरिजा देवी की आवाज़ में इस उपशास्त्रीय संगीत के साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

0: नेताओं में से एक बनना चाहता है, मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से

0: हमारा राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री की यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट

0: बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा

0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said the operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations.
0: Bharat ke defense platform ki capability aur credibility duniya dekh rahi hai. Aapne ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में गाइड फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए है जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और दस्तक।

संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करे में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान।

0: देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो एचएस रावल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1: तुम कुंदन हो ना?
2: हाँ, तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए?
1: द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबतलाल का बेटा हूँ।
2: अरे भाई, तुम कब आए? कब आए?
1: कुछ देर पहले।
2: काफी आ गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई
1: पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे?
2: ये कैसे हो सकता है? हम

0: साथ देंगे, मैं अभी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ।
1: इंतजाम हो चुका है आमिर साहब।
0: वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों?
1: दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता?
0: नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ।
1: घोड़े का ढाई बचो।
2: बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो।
1: वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा, बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें।
3: 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970 की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था।
4: हजरात, आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है।
5: जी हाँ, जल्द से।
4: अब मैं मीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब।
5: आइए आइए मीर साहब, आइए।

शायरी के खुदा तूने बिल्कुल सच कहा है। ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद।

सन 1970 वो साल है जब दस्तक फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ।

1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मनचली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया।

सन 1972 की परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का ये अभिनय।

कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ ने हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं।

संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही

सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है, जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल, और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नायिका थी।

सहज सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जंचे, जैसे मनचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर, लाखों की बात, और हाँ 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है।

1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे, पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती, पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पी डी शिनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के दिनों में हरिहर जरीवाला को संजीव कुमार का नाम दिया। जब संजीव कुमार 20 वर्ष की आयु के ही थे, इन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाने आरंभ कर दिए थे, जैसे ऑर्थर मिलर के ऑल माई सन्स की रंगमंची

प्रस्तुति में एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल आपने किया, वहीं एके हंगल के नाटक में संजीव कुमार ने 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। निर्देशक अप्सी ईरानी की फिल्म राजा और रंक ही वो फिल्म थी जिसके माध्यम से संजीव कुमार लाइमलाइट में आए थे, और ये फिल्म इनके फिल्मी सफर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है।

अपनी फिल्मी यात्रा के कई ठहराव और पड़ावों को पार करते हुए जब 1980 आया, उस वक्त तक संजीव कुमार ने अपने जीवन के प्रति अपनी दिनचर्या के संतुलन को खो दिया था। 1982 की विधाता में एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार के अभिनय की चर्चा चल पड़ी। वहीं 1983 की फिल्म हीरो में संजीव ने अपने अभिनय से दमदार उपस्थिति दर्ज की। फिर एकाएक 6 नवंबर 1985 को सिने दर्शकों का पसंदीदा चहेता अभिनय सम्राट असामयिक काल का ग्रास बन गया। संजीव कुमार अपनी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी से लेकर उनकी मृत्यु पश्चात प्रदर्शित फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन तक हमेशा अपनी भूमिकाओं और अभिनय के लिए चर्चित रहे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार, जो केंद्रित था संजीव कुमार पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अपने दिल में मुलाकात की ख्वाहिशों को दबाकर अक्सर उन्हें देखा है, किया है हमने भी उनके आने का इंतजार। ये इंतजार और उस इंतजार में कटती घड़ियां और लंबी होती जाती हैं। दिल सच ही तो कहता है, तुमको पा लेने में वो कैफियत कहाँ, जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए।

वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है

होती गई। वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशी होती गई। बड़ा मुश्किल ये अफसाना हो गया, किसी ने देखा एक नजर और दिल उनका हो गया। तेरा

उनके पैरों में लिपटी पाजेब को देखकर रश्क होता है। ये खनक बेबस ही दिल को धड़का जाती है। माथे की बिंदिया, ये नूर जो बातों से भी छलक जाता है। क्या कहूँ, कितना बेबस दिल को किया जाता है। उठकर तेरी बज्म से जाएं तो अब कहाँ, दिल ने तड़प कर तड़पाया सरे महफिल मुझे।

शम्मा को दिन के उजाले से क्या वास्ता, रातों के अंधेरे में जो जला करती है। मोहब्बत की रवायतों को सीने में छुपाए, खामोशी से प्यार का इजहार किया करती है। कभी सोचते हैं क्यों परवाने शमा से जुदा हो न सके, चांद सितारों की रोशनी में फना हो न सके।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या कहूँ, जख्म दिल के हैं मेहरबानी आपकी, दर्द दिल भी है एक निशानी आपकी, वफा दिल से ज्यादा आपसे की है, चमन के फूलों की हाँ हमने भी आरजू की है, हसरतों की बंदिशें अब जाने भी दो, दिल की सदा मोहब्बत की दीवारों से टकराने भी दो।

कभी तुमने बुलाया नहीं, कभी हम पास आए नहीं। रात मोहब्बत की धड़कनों को सुनती है, बारह दिल में शबनम की तरह बरसती है। क्या कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गजब हो जाता है। जब सामने वो आ जाते हैं, एहसास से अदब हो जाता है।

आज के छह गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभिया मनु प्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के

0: साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra